FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है, शक संबत 1948 के बैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 54 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय

0: उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग

0: भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर इज्जुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

काम पिया मोरी रगदे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शब्दों की सुंदरता देखिए।

कोटि प्रयास के बाद भी कोई प्राणी मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं कर सकता, ये तो तभी संभव है जब करुणा निधान भगवान की कृपा हो जाती है। और इस जन्म को पाकर भी यदि इसको वृथा गवा दिया जाए तो ये अनर्थ होगा मानव जन्म के साथ। इसलिए कृपालु प्रभु के स्मरण का नित्य नियम पालकर आगे बढ़ना यही सर्वोचित है।

यदि संसार के समस्त जीवों में अपने इष्ट को देखने की दृष्टि जाग जाएगी तो उस जीव को परमानंद प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। नेत्र बंद हो अथवा खुले हो, दोनों से ही उसी परमात्मा की दृष्टि, उसी परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा।

0: आज के कार्यक्रम वंदना में आपने जिन रचनाओं को सुना वे स्वर थे अनूप जलोटा, बेगम परवीन सुल्ताना, मोहम्मद रफ़ी और ये देशभक्ति परक रचना आपने सुनी संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे भरतहरि के वैराग्य शतक से पाठ। आलेख और वाचन दामोदर शास्त्री का है।
1: भुगतान भुक्ता वयमेव भुक्ता

हमने विषयों को भोगा नहीं, उल्टे विषयों ने ही हमको भोग दिया। हमने तप नहीं किया बल्कि तप ने हमें तपा दिया। हमने समय नहीं बिताया किंतु समय ने ही हमें नष्ट कर दिया। इतना होने पर भी तृष्णा हमारी कम नहीं हुई बल्कि हम वृद्ध हो गए। क्षान्तुम् न क्षमया गृहोचित सुखम् त्यक्तन्न संतोषतः सूढ़ा दुस्सह शीतवात तपन क्लेशा न तप्तम् तपः ध्यातम् वित्तमहर्निशम् नियमित प्राणैर्न संभो पदम् तत्तत् कर्म कृतम् यदेव मुनिभिः तैस्तै फलैर्वञ्चितम्। क्षमा किया किंतु हमने असक्त होकर संसार का सुख छोड़ा तब जब हम विवश हो गए। सर्दी गर्मी आदि सहन की किंतु तप न किया। धन का ध्यान किया किंतु भगवान का कभी ध्यान नहीं किया। हमने कर्म तो वो किया जो मुनियों द्वारा किए जाते हैं किंतु हम फलों से हमेशा वंचित रहे। वलिभिर्मुखमाक्रांतम पलितैरंकितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते कृष्णैका तरुणायते। मुंह में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल पक गए और अंग शिथिल हो गए। किंतु कृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो अब भी युवा होती जा रही है। येनैवाम्बर खंडेन संवीतो निशिचंद्रमाः तेनैव च दिवाभानुः अहो दौर्गत्यमेतयोः। एक ही आकाश को नापने के लिए सूर्य और

0: चंद्रमा दोनों भ्रमण करते हैं और दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, किंतु कोई भी इस आकाश को नापने में सफल नहीं हुआ। अवश्यम या तारस्थिर तरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्य यति न मनो यत् स्वयममून् व्रजन्तस्वातन्त्र्यात् अतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्त्वा इहेति श्रमसुखमनन्तं विदधति। जब यह संचित विषय अंत में छूट ही जाएगा तो मनुष्य उसे प्रसन्न ही क्यों नहीं त्याग देता, क्योंकि जब अपने से ही छूट जाएगा तो हमें दुख होगा और जब स्वयं ही उसे हम छोड़ देंगे तो हमें महासुख की प्राप्ति होगी। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। वे कवि सबसे श्रेष्ठ हैं जो अनेक रसों में निष्णात हैं, ऐसी काव्य रचना करते हैं जिससे अपनी कीर्ति से उन्हें न तो बुढ़ापे का भय होता है न मृत्यु का भय होता है। ऐसे कवि हमेशा संसार में अमर होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकाश किरण, भरतहरि के वैराग्य शतक से पाठ। आलेख और वाचन स्वर दामोदर शास्त्री का था।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान। आज की कड़ी को स्वर दे रही हैं आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी साधनकालीन सभा में रात्रि 9:30 पर आज आपको सुनवाएंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और रात्रि 10 से आप सुन सकेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय होगा मिर्ची में सिंचाई तथा पौध संरक्षण। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत लेकर आएंगे प्रातः 7:00। प्रातः 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। आज इसमें चर्चा होगी गर्मी में लू से बचाव, और आप सभी सुनेंगे अपने फरमाइशी लोकगीतों को ब्रज लोक लहरी के अंतर्गत। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि लेकर आएंगे प्रातः 8:30 पर, और प्रातः 9:00 आपको सुनवाएंगे विशेष वार्ता, जिसका विषय होगा भारतीय संस्कृति में पुरुषोत्तम मास। वार्ताकार होंगे गोपाल चतुर्वेदी। प्रातः 9:15 पर सुनेगा सामयिक चर्चा। प्रातः 9:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम बाल गोपाल। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी गर्मी की छुट्टियों का उपयोग और मधुमक्खियों की उपयोगिता विषयों पर। बाल रूपक सुनवाएंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आलेख स्नेहलता अग्रवाल का होगा। प्रस्तुति होगी धर्मेंद्र कुमार की। और इसी कार्यक्रम में आप सुनते हैं बच्चों के मुख से कविता, कहानी और चुटकुले भी। प्रातः 10:00 आपको सुनवाएंगे विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा। आज इस पत्रिका में आप सुनिएगा विज्ञान चर्चा, भूकंप एवं प्राकृतिक आपदाओं की वैज्ञानिक भविष्यवाणी। सुनिएगा

भेंटवार्ता जिसका विषय होगा जैव विविधता संरक्षण में विज्ञान की भूमिका। वार्ताकार होंगी सुश्री मोनिका। विज्ञान वार्ता का आज का विषय रहेगा हमारे पेट की अनोखी दुनिया गट माइक्रोबायम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर हरीश सारस्वत। श्रृंखला विज्ञान जिनका ऋणी है इसके अंतर्गत आज विषय रहेगा प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। संकलन और स्वर चंद्रका कुमार का होगा। विज्ञान गल्प में आज आप सुनेंगे मानव के बाद। आलेख और स्वर अरविंद कुमार का होगा। आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे विज्ञान समाचार। आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग चंद्रका कुमार का होगा और इस कार्यक्रम के संयोजक होंगे ओम प्रकाश सिंह। फरमाइशे फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी लेकर आएंगे दिन में 11 बजे से और 12 बजे आप सुन सकेंगे कुछ फिल्मी कव्वालियां। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आज की कलाकार होंगी राधा दीक्षित।

0: गीता सिन्हा की लिखी हुई झलकी काल करे सो आज कर आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:15 पर। प्रस्तुति होगी धर्मेंद्र कुमार की। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर और 3 बजे हमारी पहली सभा का समापन होगा। दूसरी सभा प्रारंभ होगी संध्या 5:30 से कार्यक्रम युवाणी के साथ। युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रूपक दूरियां नजदीकियां बन गई। विश्व दूर संचार दिवस पर आधारित ये रूपक आप सुनेंगे। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का होगा। प्रस्तुति होगी आर के त्रिपाठी की। संध्या 6:15 पर सुनिएगा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इस समय चर्चा का विषय रहेगा गर्मियों में गहरी जुताई के लाभ और बढ़ता तापमान, रखें सुरक्षा का ध्यान। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपने ही ब्रज लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम अपने मन भावन कार्यक्रम को, अपने फरमाइशी ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम को। संध्या वंदन का समय संध्या 6:45 का होगा और 7:05 पर संध्या में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज काव्य मकरंद। शाम सुहानी कार्यक्रम होगा संध्या 7:31 का और रात्रि 8:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि में 11 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज के कार्यक्रम का विषय मिर्ची में सिंचाई तथा पौध संरक्षण। आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, इस समय आपके खेत में मिर्च की फसल खड़ी होगी। अब तक आप अपनी फसल से 2-4 बार फलों की तुड़ाई भी कर चुके होंगे। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस गर्मी के मौसम में किसी भी फसल से फलत लेने के लिए विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। यदि सिंचाई में 2-3 दिन की देरी भी हो जाए तो अच्छी खासी फसल नष्ट हो सकती है और सूख सकती है। इसलिए हमें सबसे अधिक ध्यान फसल की सिंचाई पर देना है कि खड़ीफ मिर्च की फसल से भरपूर पैदावार तभी ली जा सकती है जब प्रत्येक सप्ताह उसमें सिंचाई की जाए। हाँ, सिंचाई करते समय भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिंचाई किस समय करनी चाहिए। विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना होगा कि सिंचाई दोपहर बाद सायंकाल में करना ज़्यादा श्रेयकर रहता है। आजकल बाजार में हरी मिर्च खूब देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आपके खेतों में हरी मिर्च इस समय लगी हुई है और उसकी तुड़ाई हो रही है। तुड़ाई प्रति सप्ताह करनी चाहिए, लगातार फलत मिलती रहे इसके लिए आवश्यक है कि आपकी फसल पर लगातार फूल बने रहें, फूल आते रहें। और इसके लिए प्रति माह मिर्च की खड़ी फसल पर 25 से 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। ध्यान रहे कि यूरिया सदैव उस समय दें जब खेत में खूब नमी हो। नमी की कमी होने पर

0: पौधे के जलने का संभावना बनी रहती है। यदि पौधों पर आए अधिकांश फूल गिर रहे हों तो उन्हें गिरने से रोकने के लिए प्लेनोफिक्स नामक हार्मोन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 4.5 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़का जाता है और 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 लीटर पानी का घोल पर्याप्त रहता है और इस घोल का छिड़काव स्प्रे मशीन से सायंकाल में करना चाहिए। समय समय पर फसल को देखते रहें। पर्णकुंचन रोग अर्थात पत्ती सिकुड़ने वाला रोग, जिसमें पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, छोटी छोटी और पौधे रह जाते हैं, पत्तियां घनी हो जाती हैं, फलत कम और फलियां विकृत हो जाती हैं, अगर ऐसा पौधा दिखाई पड़ता है तो उस पर तुरंत ही उस पर से मिर्च को तोड़ लेना चाहिए और उसके बाद इंडोसल्फान नामक कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाता है और इसके लिए करीब 1.5 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके 15 से 20 दिन के अंतराल से पुनः दूसरा छिड़काव भी इसमें किया जा सकता है। अच्छा रहे कि इसी घोल में विभिन्न फफूंद जनित रोगों से बचने के लिए, जैसे कि मैंकोजेब है वो जो कि फफूंद नाशक दवा है, और 2 किलोग्राम दवा जो होती है वो करीब 1000 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव किया जाता है। अगर आप 100 लीटर पानी का घोल बना रहे हैं तो 200 ग्राम दवा पर्याप्त रहती है। तो इस प्रकार कीटनाशक और फफूंद नाशक दवाओं का एक साथ इस्तेमाल करके छिड़काव किया जा सकता है। अधिक सिंचाई देने के कारण इस समय सिंचाई चूँकि अधिक देनी पड़ती है, गर्मी का मौसम है तो खरपतवार भी अधिक निकलते हैं जो कि पौधों से अपने भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो आवश्यक है कि खुरपी द्वारा प्रत्येक महीने 1-2 बार निकाई गुड़ाई कर देनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः सङ्कटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशौ वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड-19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विक विकासलाभः प्रपादितः भविष्यति, जनसंख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिश्रृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीय चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-2000 तमाब्दीयायाः राष्ट्रीय शिक्षानीतेः

0: विंशत्यधिकद्विसहस्रतमाब्दीयस्य राष्ट्रियविद्यालयशिक्षापाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु तिस्रिषु भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीयमूलकं भवेत्। भारतीयर्तुविभागेन अद्य अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहाय पश्चिमबंगाले हिमालयस्य अधोवर्तिक्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् ऊनत्रिंशत् धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे सार्धत्रिवादने पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7 बजे हैं। आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आशा भोसले की आवाज में आपने सुना 16वां साल फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था SD बर्मन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये था गीत फिल्म राजकुमार से। इस गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: विकास अपने स्वभाव को पूर्ण

0: जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वाराणसी राजमार्ग पर स्थित तालनदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
5: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में BCCI की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
5: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
4: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति

0: पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर में 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक होगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ, तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो और इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए विंध्य प्रसादम गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। विंध्याचल में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विंध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूजा की सामग्री और प्रसाद उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। चित्रकूट नगर पालिका क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। कल नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता

0: ने बताया कि नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ही इसे सुंदर बनाया जा रहा है।
1: उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को स्वागत। आज के जा कार्यक्रम में सबसे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैयाओं, आज को दिन बड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि आज से पुरुषोत्तम मास की प्रारंभ है रहे है, तो हमारे ब्रजमंडल में पुरुषोत्तम मास की तो बड़ी ही महिमा है और समस्त हर जगह पे भी है। तो हमारे ब्रजमंडल में तो विशेष करके भक्तजन जो हुए हैं वो ठाकुर के दर्शन को नियम रखे हैं और जमुना जी पे दीपदान करें हैं, देवालयन में दीपदान करें हैं, हमारे ब्रज की जो है परिक्रमा लगावे हैं और नित्य यमुना स्नान को भी नियम धारे हैं। जिनसे जो हो सके है वो अपने समर्पण के भाव को प्रकट करें हैं ठाकुर जी के समक्ष। तो कही जाए है कि भगवान स्वयं कहें कि माशा नाम पुरुषोत्तमा हम, भगवान श्री कृष्ण कहें हैं कि मैं मासों में महीनों में पुरुषोत्तम हूँ। और पता ही होगी कि पुरुषोत्तम मास कैसे बनो, जब प्रहलाद जी की रक्षा के तय नरसिंह भगवान आए ना, तो वो समय विशेष करके भगवान ने बनायो। तो प्रसाद तो हम सब पाएंगे पुरुषोत्तम मास को आराधन के द्वारा और नित्य नियम के द्वारा। तो भैया बस विशेष करके सत्कर्मन के ताई तो विशेष यही चाहिए कि अपने मन में शुद्धा भाव हो जाए और सबके प्रति प्रेम रखें मन में, तो फिर सब सार्थक है। और सबके प्रति मन में प्रेम रखें तो भैया अपने शरीरों के प्रति प्रेम रखना पड़े हैं, क्योंकि अगर शरीर ना स्वस्थ होएगो तो फिर आप श्रद्धा, आपके नियम, आपके दर्शन, आपके पूजन भला कैसे करोगे। तो जा समय गर्मी भी प्रकट है रखी है, खूब ढेर गर्मी पड़ रही है, गर्म हवा चल रही है और प्रातः 9-10 बजे के बाद तो निकलवो, समझ लो कि प्रातः में दोपहरिया हो जाए है और संध्या को भी दोपहरिया ही रह जाए है। भैया गर्मी इतनी तेज है कहाँ कहें। तो गर्मी से बचवे के ताई अपनी विशेष सुरक्षा आपको खुद ही करनी होगी। तो ऐसे काम करें जैसे लू लगवे से हम अपने शरीर को बचाएं। तो गर्म वातावरण में बाहर ना निकलें, हो सके तो बालकन को घर में ही रोक करके रखो। भाई अब तो स्कूल की भी छुट्टी पड़ गई है और विशेषकर उनको समय और परिवर्तित है गया कि वो ज़्यादा देर तक ना जाएं, धूप में उनको निकलवे के काम ही ना होए। और आप जरूर करके निकलो तो भैया ऐसे ठंडे पेय पदार्थ उनको पान करके निकलो और संग लेके चलो, जिनसे कि आपके शरीर में तरावट बनी रहे। अब जा समय खूब फैलाए रहे हैं बाजार में, तो बेल को शरबत बहुत तासीर देवे ठंडक की, सत्तू को जो सेवन है वो भी आपके शरीर को ठंडक पहुंचाए है, पुदीना है, नींबू है, आमी ओए है, तो आमी की जो पना बने हैं, कच्ची आमी को पना बने हैं वाए, तो दिन में एक बार दो बार जरूर अपनी खुराक में शामिल करो ताकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और गर्मी की जो लू लपाट चल रही है गाय इनसे बच के रहे। और अब आप कहोगे कि इतनी सारी बातें नहीं बोलोगी तो हमारे गीतन ने कब सुनवाओगी, तो भैया बातें करें बंद और आपके नामन को लेनो करें शुरू, क्योंकि भैया आपकी फरमाइश तो लगातार चलती चली आ रही है। जे हैं हमारे पहले श्रोता हैं जे पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा ते अनंत भगत, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत, इनके संग जुड़ गए हैं हमारे जे श्रोता अमलता सम्रीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश के श्रोता, योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, अमिता और श्रीमती ललताबाई भारतीय, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल के हैं जुड़े भाई हमारे श्रोता डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, डॉक्टर गीता श्यामनानी, दुर्गा भारतीय और ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेटी जिला सीहोर ते हैं, अमर सिंह भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन कोशाबाई भारतीय, इनके संग हमारे एक और श्रोता आए गए हैं जे हैं उस पार ते यादराम, वीरेंद्र कुमार, भोली, मनीष, कान्हा, कोमल, लड्डू, वैष्णवी, प्रीति, पिंकी, ओमवती, मनोज कुमार, गौरी, लोदीराम, भगत जी, राजू देवी, और हमारे श्रोता हैं शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमिनी, पुरंजय प्रजापति, कविता, गोविंद, सिमरन और समस्त प्रजापति परिवार। संगे संग आए गए हैं, जुड़ गए हैं हमारे जा कार्यक्रम ते पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, हंसमुख लाल खुशदिल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुशदिल, संजीव कुमार और समस्त परिवार इनको शामिल है गए है हमारे आज के जा कार्यक्रम में। और हमारे जे श्रोता भी जुड़े भए हैं हमारे संग जे हैं ग्राम

हरांसी जिला हिसार ते राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और समस्त इनके परिवारीजन। जी हमारे श्रोता हैं पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ ते दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। हमारे एक और श्रोता आए गए हैं चंडीगढ़ के, श्रोता जुड़ गए हैं जय कार्यक्रम ते, सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनके संग एक और नाम ले हुए हैं। जी हैं हमारे नियमित श्रोता, जय कार्यक्रम को हमेशा सुने हैं और फरमाइशों भेजे हैं, तभी तो पता लगे कि आप सुनो हो लगातार। ग्राम जावरा ते अंजलि चौधरी, मयंक चौधरी, डिंपल चौधरी, देव चौधरी, हिमांशी चौधरी, अनाया चौधरी और समस्त इनको परिवार। तो भैया अब नेक रुके हैं, नेक थमे, आपकी फरमाइश को पूरी करें। आप सबने जो सुनना चाहो है वह लोकगीते सुनवाएं, तो जे आपको सुनाए रही हैं लोकगीते माधुरी शर्मा।

0: बांकी बिहारी की बांकी मरोड़, चित लीनो है चोर। बात सही है भैया, चित लीनो है चोर, तभी तो खूब सारे भक्त आवे हैं, रोज दर्शन करे हैं और अघायन आए हैं मन। तो आपने कार्यक्रम में अभी आगे बढ़े हैं, लेकिन पहले सुनवावे जे संदेश।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाते का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिए, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबरा हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बार फिर से आप सभी को स्वागत आपके कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में। और आज कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में आप सुन रहे हो अपने पसंद के लोकगीतन गुंजाए आप सब कहो ब्रज लोक लहरी। और अब ब्रज लोक लहरी में सुनवावे आपकी पसंद को बातें। पहले जी और बता दें मैं कि जाई लोकगीत को सुनवे के ताई हमारे पास जो फरमाइश आई हती वो फरमाइश हती राजू लवानिया, पंकज कुमार, अर्पण जी खेम जी, पंचम लाल चतुर्वेदी और खंदौली आगरा ते जी सबरे श्रोता जुड़े भये हते जाई गीत को सुनवे के ताई जिन्होंने फरमाइश भेजी। और अब आपको सुनवावे जो लोकगीत उनके प्रति कौन कौन ने संदेश भेजे हैं भाई सुन लें। तो जे हमारे श्रोता हैं प्रदीप भैया बिरला नगर ग्वालियर थे। इनके बाद जे मिल गए हो संदेश जे हैं ग्राम उंदी ते जनार्दन सिंह सिसोदिया, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, टीकम सिंह सिसोदिया और बंसी बारे बाबा। इनके संग एक और कलाकार, एक और श्रोता हमारे जुड़ गए हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ थे। और जे श्रोता हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ थे महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। इनके संग दत्रेंगी ते हमारे श्रोता भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ये हैं हमारे श्रोता, ये हैं बस स्टैंड द्वारा पोस्ट झिरिया खेड़ा से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, कुमारी पूनम कुमारी, अवंती कुमारी, नेहा कुमारी, मुस्कान, पवन और बड़ी दीदी, छोटी दीदी, इनके बड़े भैया, छोटे भैया, शीला भाभी, जसोदा भाभी और इनके मित्र सुनील भाई गोरखपुर ते सबरे एकत्रित है के जाए कार्यक्रम को सुने और सबके नाम भी हमने पढ़े। और जे हमारे श्रोता हैं मोहिनी अग्रवाल औरंगाबाद बगील की बगीची कॉलोनी से मथुरा थे। और जे हमारे श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार। जे हमारे श्रोता हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ थे। तो अब सुने हैं आप सबकी पसंद पे ऋषि कुमार के गायब है जा लोकगीत को।

0: ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। अब भाई आपने सुनो ऋषि शर्मा के सर में जा लोकगीत को, और अब सुने हैं जो संदेश, बाकी बात सुनवाएंगे आपके लोकगीतन को।
1: पानी पिए तथा अधिक प्रोटीन, लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिए तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: और आप सबसे फिर से जुड़ गए हैं एक बार, और आपके संदेशन को पढ़े हैं, आए हैं आपके जो संदेश हुए हैं। ग्राम माटते शैलेंद्र प्रताप सिंह, विनेश प्रताप सिंह, समस्त प्रताप परिवार को जो संदेश है, और जाके बाद जिस संदेश मिलो खुर्जा उत्तर प्रदेश ते तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा को जिस संदेश अते बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा, उमेश प्रमिला बंछोर, राजेंद्र माधव वर्मा के जे संदेश आयो, पंचायत बठेन पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ते।

और जे हमारे श्रोता जुड़ गए हैं पटेल नगर मलोट ते, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और इनके संग में गुड्डू हैं, जे हैं हमारे कबीर रेडियो श्रोता संघ के डी डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ ते श्रोता हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया इन, और मास्टर अल कबीर भी जुड़े हुए हैं जिनसे इनके संग ही संग एक और श्रोता को संदेश मिले, और जी हैं महामाया चौक मोघा मेघापारा ते रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल की जी संदेश को शामिल कियो। और जी हमारे श्रोता हैं खम्हरिया छत्तीसगढ़ ते, साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। और अब सुनवावे हैं, लो भैया संदेश नए रुक रहे हैं जी हैं ग्राम गोपी की नगरिया ते, मिठन लाल, सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और उनके पापा मम्मी, ग्राम नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके परिवारीजन जी हैं ग्राम नौधरा ते, कोमल, मास्टर जशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके पापा मम्मी, ग्राम कुमोद बनते हैं रमेश चंद्र सेन, सुनील, रचना, गब्बर और समस्त परिवारीजन, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर के श्रोता हैं अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके पापा मम्मी। तो आप सब के संदेश को शामिल करके जल्दी से सुनवावे हैं जे अगलो लोकगीत जय स्वर्दीनो है पुष्पलता शर्मा ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में

0: भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर

0: मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति

0: तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के

0: अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
3: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
2: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। प्रस्तुत है ये कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हम ले रहे हैं फिल्म पति पत्नी और वो से। गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रविंद्र जैन का।
4: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो कि आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। इस गीत को लिखा था निदा फाजली ने, संगीत था उषा खन्ना का और फिल्म का नाम था स्वीकार किया मैंने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

पापा द ग्रेट इस फिल्म से ले रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है MM करीब का।

आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपने सुना प्रिंस फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था सचिन गुप्ता का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

अनवर, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना रूप कुमार राठौड़, मुर्तजा और कादिर की आवाज़ में। इस गीत को

0: लिखा था सईद कादरी ने, संगीत था मिठुन का। और इसी के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजने को है। आपको सुनवाते हैं ये विशेष वार्ता, भारतीय संस्कृति में पुरुषोत्तम मास। वार्ताकार हैं गोपाल चतुर्वेदी।
2: जिस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती है उसे अधिक मास, अधिमास, खरमास, मलमास अथवा पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका एक नाम मल्लुमल भी है। यह मास प्रत्येक 32 मास 16 दिन और 6 घड़ी के अनंतर आता है। इसमें सभी कामना मूलक कार्य किए जा सकते हैं। इस मास में सभी पापों को दूर करने वाले व्रतों की भरमार रहती है। मल मास का प्राय पूरा ही महीना व्रतों के लिए निहित है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए सभी धार्मिक कार्य सतगुणा फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस मास में भजन कीर्तन, जप तप, व्रत अनुष्ठान आदि कार्य किए जाते हैं। इस मास में कैसी भी कोई स्थापना, विवाह, मुंडन, नववधु का गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण, अष्टिका श्राद्ध आदि जैसे संस्कार व कर्म करने की मनाही है। साथ ही नए वस्त्रों का पहनने व नई खरीदारी आदि करने का भी निषेध है। इस मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं। शास्त्रों व पुराणों में उल्लेख है कि एक बार मल मास ने अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु से यह कहा कि उन्हें प्रभु क्षण मुहूर्त, दिन पक्ष, मास आदि अपने अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार निर्भय होकर विचरण करते हैं, परंतु मुझ अभागे का न तो कोई स्थान है और न कोई स्वामी, और न ही मुझ में कोई शुभ कार्य किए जाते हैं। मल मास की पीड़ा को समझते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आज से तुमको अपना नाम देता हूँ। तभी से इस मल मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। अधिक मास फागुन से कार्तिक मास के मध्य आता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी विशेष लाभकारिक है। क्योंकि इस मास के अधिपति भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका ध्यान व उनका पूजन अर्चन इस मास में अत्यधिक लाभदायी है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त करने के लिए उनका 33 मालपुओं का भोग उनके 33 प्रमुख नामों को लेकर लगाया जाता है। भगवान विष्णु के ये 33 प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: ओम विष्णुवे नमः, ओम जिष्णुवे नमः, ओम महाविष्णुवे नमः, ओम हरिये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम अधोक्षाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्री शाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम विश्व साक्षे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम मधुरपते नमः, ओम अनुरुद्धाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम जगत योनये नमः, ओम अनंताय नमः, ओम शेष शासने नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम देत्राय नमः, ओम विश्वमुखाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम धरावसाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम मघार्दनाय नमः, ओम श्रीपते नमः। साथ ही इनका बतौर प्रसाद भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जन्म जन्मांतर में समृद्धि बनी रहती है, साथ ही उसे अपने मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अधिक मास में के संदर्भ में पुराणों में एक बड़ी ही रोचक कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है, जो कि इस प्रकार है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने उससे कोई अन्य वरदान मांगने को कहा। इस पर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसे संसार का कोई भी

नर नारी पशु पक्षी देवता असुर आदि कोई भी न मार सके, उसे न घर में मारा जा सके और न ही घर के बाहर मारा जा सके। वह वर्ष भर के 12 महीनों में भी किसी भी महीने में न मारा जा सके। जब वह मरे तो न तो दिन का समय हो और न रात्रि का, वह न किसी अस्त्र से मरे और न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं

मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। साथ ही वह भक्तों पर अत्याचार करने लगा। विशेषतः वह अपने पुत्र प्रहलाद तक के खून का प्यासा हो गया, क्योंकि वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। इस पर भगवान विष्णु ने स्वयं द्वारा निर्मित अधिक मास की रचना करके और नरसिंह अवतार लेकर यानी आधे पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर साय के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वारा भेज दिया। अधिक मास की उत्पत्ति इस प्रसंग से भी मानी जाती है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्रमास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के मध्य लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो कि हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को काटने के लिए 3 वर्ष में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। पुरुषोत्तम मास में साधक को अपने सुकृत्यों चिंतन मनन ध्यान योग भजन कीर्तन व हवन यज्ञ आदि के द्वारा अपने शरीर में समाहित पंच तत्वों जल अग्नि आकाश वायु व पृथ्वी में संतुलन बनाने एवं उन्हें अपने शरीर में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह पंच तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप में निश्चित करते हैं। इससे उसकी भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति होती है। साथ ही इस तरह के कार्यों से व्यक्ति प्रत्येक 3 वर्ष बाद स्वयं को स्वच्छ पवित्र व निर्मल करके नव ऊर्जा प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के कुंडली दोषों का भी अंत हो जाता है। पुरुषोत्तम मास के एक नहीं अपित अनेकों महत्व हैं। इस मास में हम सभी को धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी महारानी की पूजा अर्चना करने से भी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस मास में भगवान विष्णु के निमित्त कोई न कोई नियम हम सभी वैष्णवों को लेना चाहिए। इस मास में धार्मिक ग्रंथों व अन्य विभिन्न वस्तुओं के दान आदि पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले माने गए हैं। धार्मिक स्थानों की परिक्रमा करना भी अत्यंत मंगलकारी माना गया है। साथ ही भगवान विष्णु के द्वारा अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना भी मोक्षदायक माना गया है। अधिक मास में भक्तों व श्रद्धालुओं को व्रत उपवास पूजा पाठ साधन ध्यान भजन कीर्तन चिंतन मनन आदि का भी अपनी दिनचर्या में समावेश करना चाहिए। साथ ही यज्ञ पूजन भी करने चाहिए। श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत श्रीमद् भगवद गीता श्री रामचरितमानस विष्णु पुराण भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण पठन मनन विशेष रूप से पुण्यदायी है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधकों को पापों का शमन करके उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। पुरुषोत्तम मास में समूचे ब्रज के विभिन्न प्राचीन मंदिरों व अन्य स्थानों पर अत्यंत धूम रहती है। धर्म नगरी श्रीधाम वृंदावन के विश्व विख्यात ठाकुर राधा बल्लभ मंदिर में वर्ष भर के सभी त्योहार महा में पड़ने वाले तिथियों के अनुसार अत्यंत श्रद्धा व धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें झूलनोत्सव नौका विहार होली दिवाली अन्नकूट छप्पन भोग बसंत पंचमी शरद पूर्णिमा आदि के त्योहार धार्मिक पद्धति के अनुसार मनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के ठाकुर श्री राधा रमण मंदिर में प्रभु के सभी अवतारों की झांकी प्रतिदिन भक्तों श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। साथ ही ठाकुर श्री राधा दामोदर मंदिर में पूरे अधिक मास मंदिर की 4 परिक्रमा करके गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने का पुण्य लाभ अर्जित किया जाता है। इसके साथ ही नगर के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर ठाकुर गोविंद देव मंदिर ठाकुर मदन मोहन मंदिर ठाकुर युगल किशोर मंदिर ठाकुर राधा गोपीनाथ मंदिर ठाकुर गोकुलानंद मंदिर आदि में अधिक मास की अत्यधिक धूम रहती है। जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा भक्तमाल कथा एवं विभिन्न
धर्म ग्रंथों के पारायण आदि के आयु

आयोजन होते हैं, साथ ही रासलीला, रामलीला और भक्त चरित्रों का मंचन होता है। इसके अलावा श्रीधाम वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा व यमुना स्नान करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। पुरुषोत्तम मास इन सभी को भारतीय वैदिक संस्कृति व सनातन से जोड़ने का पर्व है, जो कि आज के भौतिक व यांत्रिक युग में सभी को प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर मथुरा जिला प्रशासन व मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा युद्ध स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। जगह जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, साफ सफाई के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिससे कि यहाँ आने वाले व्यक्तियों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। जो विकास कार्य वर्षों से लंबित थे, उनको पुरुषोत्तम मास में पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिससे जनता जनार्दन को राहत मिल सके।

ईश्वरता भारतीय संस्कृति में पुरुषोत्तम मास। वार्ताकार थे गोपाल चतुर्वेदी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च जिसमें ICMR, इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसमें CSIR और जो कृषि का शोध है जिसमें कि ICAR जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश है और लगभग समय 5,000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े जैसे कि देहात है, निंजा कार्ट है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, AI लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है।
1: जी मनीष जी, एक खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है?
0: कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं जो वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह जहां भी रहता हो पूरे देश में वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस

0: इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
1: जी, खासतौर से अगर फसलों की बात करें कि एक रूटीन जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं, तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में?
0: मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अलग अलग होती हैं, तो एक जवाब तो इसके लिए मुफीद नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक मतलब एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पे निर्भर करेगी।
1: मनीष जी, आपका खास जुड़ाव आम के रिसर्च से है, आपका इंस्टीट्यूट में आम को लेकर काफी काम होता है और यूपी में खासकर मलिहाबाद का दशहरी आम या प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो आम की फसल है वो एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत फेमस भी है, तो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं युवा तो वो कैसे शुरुआत करें?
0: जो मलिहाबाद का दशहरी आम है ये विश्व का बहुत प्रख्यात आम है और इसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 125 GI 125, यानी कि इस तरह का आम मलिहाबाद के किसान या आसपास के किसान ही उगा सकते हैं और कोई नहीं उगा सकता, और इसकी मार्केटिंग और इसकी ब्रांडिंग और इसका प्रमोशन और इसका एक्सपोर्ट पे तमाम सारी CISS लखनऊ ने पहल की है। ये आम पिछले वर्ष यहाँ से समुद्र के माध्यम से सिंगापुर तक भेजा गया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और इस फसल को इससे पहले भी हम लोगों ने अमेरिका में भेजा था एयर के रूट से और वहाँ भी लोकप्रिय हुआ। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं, युवाओं को चाहिए कि इस बहुत ही खूबसूरत फसल के साथ जुड़े और इसको बहुत बढ़ावा दें क्योंकि इस पूरे विश्व में बहुत लोकप्रियता है।
1: जी मनीष जी, जो आम एक्सपोर्ट होते हैं एक बड़ा हिस्सा उसका है जो मलिहाबाद से जाता है और जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पर निर्यात किया जा रहा है और काफी दूर तक इसने अपनी पहुंच बना ली है, तो इसमें बीते कुछ सालों में आप कितना सुधार लगता है कि आया होगा?
0: उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पर कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप आम को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक वायु का माध्यम रह जाता है और एयर का जो माध्यम होता है वो बड़ा महंगा होता है, करीब 450 रुपए किलो होता है उसका खर्चा आता है। अगर आप समुद्र से ले आते हैं तो वो बेहद सस्ता हो जाता है, यानी कि आपका 50-60-100 रुपए के, तो ये माध्यम सबसे बढ़िया माध्यम है अगर समुद्र से ले जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप ले जाओगे वायु मार्ग से तो आपका 4 दिन में आम पहुंच जाएगा, 2 दिन में आम पहुंच जाएगा, लेकिन आप अभी समुद्र के मार्ग से ले जाते हैं तो वो लगता है 30 दिन 35 दिन, अगर आप दुबई पहुंचाना है तो कम लगता है, लेकिन अगर आप सिंगापुर ले जाओगे तो आपको लगभग 22 दिन 25 दिन लग जाता है, आपको आप रशिया ले जाओगे तो लग जाता है 30 से 32 दिन। तो ये समुद्र का मार्ग से ले जाने के लिए सबसे पहले क्या है कि आम की शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान है उसने एक तकनीक विकसित की जिसको सी रूट प्रोटोकॉल कहते हैं, कि यानी समुद्र से ले जाएं तो उसका पूरा प्रोटोकॉल विकसित किया कि इस तरह से आम को आप तोड़ें, इस तरह से आम को उगाएं, इस तरह से आम को पैक हाउस में लाएं, ऐसे पैक करें, और इस तरह से अगर आम धीरे धीरे समुद्र में जाता है तो 30 दिन 35 दिन आराम से आम रहता है। तो ये बहुत बड़ी संभावना जो है पिछले कुछ सालों में खुली है जिसकी वजह से बहुत सारे निर्यातक अभी सामने आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं सामने, और वो हमारी तकनीक का हमारे प्रोटोकॉल का उपयोग करके विभिन्न देशों में आम को भेजा। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तकनीक के द्वारा हमारा आम जो है पूरे विश्व में जा।
1: जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे आप, जो मन बना रहे हैं कृषि के तरफ आने के लिए और वो चाहते हैं कि कृषि के माध्यम से वो आगे बढ़ें और अपनी आय को बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
0: अब मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं के लिए कृषि एक बहुत ही

0: सख्त माध्यम है। पूरे दुनिया में सारे व्यवसाय में उतार चढ़ाव आ सकता है, कृषि में नहीं आ सकता, क्योंकि कृषि आपकी से उपजे हुए जो उत्पाद होते हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। आपको रोज खाना चाहिए होता है, आपको रोज फल चाहिए होते हैं, रोज सब्जियां चाहिए होती हैं। और इसमें अगर आप युवा आगे आते हैं तो उनके पास बेहद बड़े अवसर हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो खासतौर पे प्रोसेसिंग में आते हैं, जहां पर कि फलों को या अनाज को या सब्जियों को प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट इस देश में अभी है और जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। तो उसमें अपार संभावनाएं हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आएं और देखें कि किस तरह से आपका विकास हो।
1: जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना, कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है पर्यावरण पर आधारित हमारा कार्यक्रम आबोहवा, संतुलित पर्यावरण संतुलित पोषण। इस विषय पर आलेख और वाचन है डॉ. पंकज वर्मा का।
4: संतुलित आहार के जो अभिन्न अंग हैं वो है हमारे खाद्य पदार्थ, सब्जियां, दूध वगैरह, उन जिन सबका हम सेवन करते हैं। लेकिन आजकल पर्यावरण दूषित होने की वजह से वो आहार संतुलित नहीं हो पाता है। उसकी वजह अत्यधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल, उसकी वजह से सब्जियों में, खाद्य पदार्थों में बहुत सारी मिलावट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आहार पूरी तरह पोषित ना कर उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां भी हमारे शरीर में अंदर आ जाती हैं। ठीक इसी तरह स्वच्छ पानी की भी आजकल बहुत कमी हो गई है। चूंकि पर्यावरण को हमने ही गंदा किया है, इसलिए वही दूषित पानी हमें उसका प्रतिफल के रूप में मिलता है, जिसकी वजह से हजारों बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर हमें संतुलित आहार चाहिए तो हमें सबसे पहले हमारे पर्यावरण को संतुलित करना पड़ेगा, जिसका तरीका है कि हम अपनी आबोहवा को स्वच्छ रखें, जितना हो सके पानी को स्वच्छ रखें, पानी को बचा के रखें, उसका अत्यधिक उसको वेस्ट ना करें, मिट्टी को गंदा ना करें, प्लास्टिक जैसी चीजों का इस्तेमाल जितना हो सके उसे कम करें या बंद करें, कीटनाशकों के इस्तेमाल पर भी रोकथाम लगनी चाहिए, ताकि जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं उसमें वो सब जहर रूप रासायनिक पदार्थ हमारे सब्जियों में, अनाज में, दालों में मिलकर हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। संतुलित आहार की अगर हम बात करते हैं तो संतुलित आहार का अभिन्न अंग है स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, और सूक्ष्म पोषक तत्व में हमारे सम्मिलित हैं विटामिन्स, मिनरल और स्वच्छ पानी और कुछ मात्रा में फाइबर। इन सब का संतुलित सम्मिलित रूप ही हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। हमको दिन भर में 5 से 12 मात्रा अनाज चाहिए, 1 से 3 मात्रा दालें चाहिए, 3 से 4 मात्रा सब्जियों की चाहिए, 3 से 4 मात्रा फलों की चाहिए, 1 से 2 मात्रा बीज की या तेल की चाहिए, और 1 से 2 मात्रा दूध या दूध से उत्पन्न पदार्थों की चाहिए। अगर संतुलित आहार पर ध्यान दें तो इनमें से अधिकतर पोषक तत्व हमें हमारी धरती माँ या यूं कहें कि पर्यावरण मिट्टी से मिलते हैं। चूंकि मिट्टी को दूषित होने की वजह से वही विटामिन और मिनरल्स की कमी मिट्टी में अगर होती है तो वही कमी आपके शरीर में आ जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा जहाँ पे ये फसलें बोई जा रही हैं वो पर्यावरण कैसा है, क्योंकि अगर मिट्टी ही सही नहीं है तो उससे उत्पन्न खाद्य पदार्थ में भी वो कमी होगी और फिर वही कमी आपके शरीर में भी आएगी। विटामिन्स और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल या एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल होते हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन्स की अलग अलग तरह की मात्रा हमें दिन भर में अलग अलग पदार्थों से मिलती है। इसी के अलावा मिनरल्स जो होते हैं हमारे, मेटल्स, जिंक है, सेलेनियम है, मोलिब्डेनम है, इन सब की हमें बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन आजकल पर्यावरण दूषित होने की वजह से जो धातु नुकसानदायक है उसकी मात्रा हमारे खाने में ज्यादा होती है, जैसे लेड की मात्रा ज्यादा होती है, प्लम्बम या मरकरी की मात्रा ज्यादा होती है, और जो आवश्यक तत्व होने चाहिए उनकी मात्रा कम हो जाती है। जिस गति से जंगलों का नाश हो रहा है उसके साथ साथ आने वाले पानी के बहाव के साथ जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी बहकर सागर में मिल

जाते हैं। उस वजह से जो फसल पैदा होती है उस फसल में उपयोगी और आवश्यक तत्वों की धीरे धीरे कमी होने लगती है और फिर वही कमी खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में होती है और जो हजारों तरहों की नई बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें जिस गति से आजकल डायबिटीज, मोटापा और अस्थमा की जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, उसकी मुख्य वजह यही है कि उनसे उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों में भी जो आवश्यक तत्व होने चाहिए सूक्ष्म रूप में, उन सब की कमी है और जो जहरीले तत्व हैं अनजाने में हमारे को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो एक संतुलित आहार के लिए एक संतुलित वातावरण का होना या पर्यावरण का होना अत्यंत आवश्यक है।

अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण पर आधारित हमारा कार्यक्रम आबोहवा। विषय था संतुलित पर्यावरण, संतुलित पोषण। आलेख और वाचन स्वर डॉक्टर पंकज वर्मा का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बच्चों का प्रिय कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को लेकर आई हैं बच्चों की दीदी निधि मित्तल।

बच्चों जय हिंद। बच्चों अब तो खत्म हो गया होगा ना आपका इंतजार। अब आप सोच रहे होंगे किसका इंतजार। सोचो सोचो बच्चों, नहीं समझ में आया हम बताएं। आपका गर्मियों की छुट्टी का इंतजार। अब तो छुट्टियां हो गई ना बच्चों, पूरे साल तो आप पढ़ते रहते हो ना, हैं? आप सोचते होगे अरे राम गर्मियों की छुट्टियां हो जाए फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, कहते हो ना बच्चों। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया, छुट्टियां हो गई गर्मियों की। और बच्चों अक्सर गर्मियों की छुट्टियों का नाम सुनते ही मन में थोड़ा पढ़ाई से ब्रेक का मन हो जाता है ना, ब्रेक लेने का और मौज मस्ती का ख्याल आ जाता है ना। तो इसी चक्कर में ज्यादातर छात्र जो होते हैं वो अपना कीमती समय मोबाइल इंटरनेट के आभासी दुनिया में या किसी बिना योजना के खेलकूद में बिता देते हैं, वो सब बेकार जाता है ना। और छुट्टियों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके पास समय की कोई कमी तो नहीं होती ना। वैसे तो देखो आप पूरे दिन स्कूल के चक्कर में लगे रहते हो, कभी काम, कभी होमवर्क, कभी ट्यूशन, है ना। लेकिन इस समय छुट्टियों में तो आपके पास समय की कोई कमी नहीं है। स्कूल के व्यस्त रूटीन के कारण आप जो शौक पूरे नहीं कर पाते उन्हें अब समय दें, है ना बच्चों। उनको अब लेके बैठे। देखो सीखना सीखना एक चीज होती है कि वो क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहता। आप कहते हो ना आ जाओ मम्मी क्लास में बैठेंगे ना तो सर हमें ये सिखाएंगे ना। बच्चों सीखना केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं होता, यात्राएं जब हम करते हैं तो हमें वो सिखाती हैं जो हमें किताब नहीं सिखा पाती। ऐतिहासिक किलों, संग्रहालयों और स्मारकों की सैर करें। जब हम इतिहास को अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाती है। खान पान, रहन सहन और परंपराओं को समझें, सबकी अलग अलग होती हैं, तो इससे दुनिया के देखने का नज़रिया बदलता है और आप में विविधता का आप सम्मान करना सीखते हैं। बच्चों छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन

मोबाइल और टीवी के सामने बैठे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, ये तो आपको पता ही है ना। और तैराकी है, योग है, साइकिलिंग है, या कई सारे खेल होते हैं जैसे फुटबॉल है, बैडमिंटन है, तो आप उनको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और रोज रात को 10 मिनट अपनी दिन भर की बातों को डायरी में लिखें, तो यह आदत आपके केवल विचारों को स्पष्ट नहीं करती, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करती है ना बच्चों। और हाँ, एक बात और है, जब आप घूमने जाते हो ना, तो आप अपने घूमने जाते हो तो आप अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि जाते समय आप उल्टा सीधा खाओ, है ना बच्चों। जब भी आपकी यात्रा मज़ेदार रहती है और आपकी तबीयत भी ठीक रहती है, जब आप बच्चों घूमने जाओ तो हल्का और सादा खाना खाना, फल खाना, ज़्यादा तले भुने पदार्थ मत खाना, जैसे दही ले लिया कभी, छाछ ले लिया, तो इससे पेट सही रहता है। और जैसे हमें कहीं पानी पीना है तो हम सील बंद पानी लें, खुला हुआ पानी नहीं लेना कभी। और रात को खाना खाएं तो हल्का खाएं। और बच्चों हाँ, कहीं अनजान जगह पर अकेले मत जाना, हमेशा बड़ों के साथ जाना, मम्मी पापा के साथ जाना। और बच्चों, गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं वो साल का सबसे गर्म दिन माना जाता है। बच्चे पूरी गर्मी छुट्टियों के दौरान बहुत खुश और तनाव महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें स्कूलों से पूरी तरह 2 महीने के लिए छुट्टी मिल जाती है। और अधिकांश बच्चे तो होते हैं वो अपने भाई बहनों और परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, या गांव के जो दोस्त होते हैं उनके साथ अपना हिल स्टेशन चले गए, या किसी ठंडी जगह पर चले जाते हैं, है ना बच्चों। वैसे तो बच्चों आप पूरे साल पढ़ाई में लगे रहते हो, लेकिन छुट्टियों में आपको यही समय मिलता है कुछ सीखने के लिए। तो छुट्टियों में यही सीखने का समय है, इसे मौका दें, इसे गंवाएं नहीं, इसको व्यर्थ में मत गंवाएं, इसका उपयोग करें। तो बच्चों, अब एक गीत हो जाए।

बच्चों, अभी आपने ये गीत सुना और अब हम आपको एक बाल रूपक सुनवाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेखक हैं स्नेहलता अग्रवाल और प्रस्तुति है धर्मेंद्र कुमार की।

0: 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए।
1: स्वाधीन देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री के पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिठाया गया। इन्हें गृह विभाग तथा रियासत विभाग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया।
0: इन्हीं उत्तरदायित्वों के निर्वाह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1948 में भारत की 600 रियासतों का एकीकरण करते हुए विश्व के इतिहास में रक्तहीन क्रांति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था।
1: भारत को एक राष्ट्र का नया रूप देने वाले ऐसे वल्लभ भाई पटेल को जन्म देने का सौभाग्य मिला गुजरात की धरती को।
0: गुजरात की धरती पर पेटला तालुक के करमसद गांव में 31 अक्टूबर सन 1875 को जन्मे वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही सिंह के समान निर्भीक थे। किसी से दबना और किसी के सामने वे झुकना नहीं जानते थे।
1: तभी तो इन्हें लौह पुरुष कहा जाने लगा था।
0: इनकी शारीरिक सहन शक्ति भी बड़ी अद्भुत थी। वकालत की पढ़ाई के समय ये अपने एक मित्र के साथ पढ़ने के उद्देश्य से 2 महीने बाकरौल रहे थे, तभी उनकी कांख में एक भयंकर फोड़ा हुआ।
1: किसी ने कहा कि गांव में एक नाई है जो नश्तर लगाकर किसी भी फोड़े को फोड़ देने में बड़ा होशियार है। नाई बुलाया गया।
2: जय राम जी की वल्लभ भैया।
3: कहो जजमान, आज कैसे याद किया?
4: भैया बिरजू, एक छोटा सा फोड़ा हो गया है। सुना है तुम बड़े होशियार हो फोड़ा फोड़ने में।
3: सोता है ही वल्लभ भैया, हमने तो बड़ों बड़ों के बड़े बड़े फोड़े फोड़ दिए। अच्छा अच्छा, दिखाओ तो सही तुम्हारा फोड़ा कैसा है। अरे राम, ये तो बड़ा मोटा फोड़ा है। वल्लभ भैया, ये तो बड़ा भयंकर फोड़ा है, पर मैं चीरा जरूर लगाऊंगा। ये लो, चीरा तो मैंने लगा दिया, पर भैया इसकी पीप निकालने की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती।
4: बिरजू, तुम तो बड़े बुजदिल हो, लाओ मुझे दो ये सलाह।
3: अरे रे रे रे रे रे रे, ए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे रे रे रे रे रे रे।
4: छोड़ो, अरे छोड़ो बिरजू, मैं अभी इसकी पीप निकाले देता हूं।
0: और देखते ही देखते बिना किसी कराहट के वल्लभ भाई ने सलाखें लेकर फोड़े में घुसाकर चारों तरफ घुमाकर सारा पीप बाहर निकाल दिया था।
1: इसी प्रकार मई 1911 में इंग्लैंड प्रवास के समय इनके पैर में नहरुआ का दर्द हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि क्लोरोफॉर्म सुगाकर हम आपका ऑपरेशन करेंगे। वल्लभ भाई ने कहा कि मुझे क्लोरोफॉर्म सुगाने की जरूरत नहीं, ये छोटी मोटी पीड़ाएं मैं सहन करने की आदत में हूं।
0: सरदार अपना प्रत्येक काम भारी लगन

0: और कर्मठता से करते थे। काम के समय चाहे किसी भी विपत्ति का समाचार इन्हें मिला, ये विचलित न हुए और अपने काम में लगे रहे।
1: सन 1909 में सरदार वल्लभ भाई एक महत्वपूर्ण मुकदमे की पैरवी कर रहे थे।
2: सरदार, आपका तार आया है।
0: सरदार तार लेकर अपनी जेब में रखने लगे तो दूसरा व्यक्ति बोला,
2: इसे पढ़ तो लीजिए, देखिए इसमें क्या लिखा है।
0: वो तार था उनकी पत्नी झवरेबा के निधन का। अदालत चलते रहने तक इस समाचार का उनके चेहरे पर कोई असर नहीं देखा गया, लेकिन अदालत से बाहर निकलने पर लौह पुरुष की आंखों में आंसू डबडबा रहे थे।
1: सन 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर इनका उनसे संपर्क हुआ। सन 1928 में जब खेड़ा सत्याग्रह आरंभ हुआ तो इन्हें उसका नेतृत्व सौंपा गया।
0: सन 1928 में बारदोली सत्याग्रह के समय किसानों की आम सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था,
3: मेरे प्यारे किसान भाइयों, ब्रिटिश सरकार ने आप पर जो 25% की लगान वृद्धि की है वो गरीब किसानों पर एक जुल्म किया गया है। हम इस जुल्म को सहन नहीं कर सकते। जब तक सरकार अपना ये लगान वृद्धि का कानून वापस नहीं लेगी हम चुप नहीं बैठेंगे। किसानों पर किए जा रहे इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और ब्रिटिश सरकार को ये बता देंगे कि अब हम अधिक जुल्म और अत्याचार सहन करने की स्थिति में नहीं है।
4: सरदार वल्लभ भाई पटेल
5: जिंदाबाद,
4: सरदार पटेल
5: जिंदाबाद,
4: सरदार पटेल
5: जिंदाबाद।
1: ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने पर इन्हें अनेकों बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने अधिकारी डरते हुए ही आते थे।
0: यरवदा जेल की बात है। एक दिन जेलर ने आकर सूचना दी,
6: सरदार मच्छरदानियां फट गई हैं, आज रात को नहीं मिल सकेंगे।
3: अभी बाजार से जाकर नई खरीद कर लाओ। जाओ अपने भंडारी से जाकर कहो जेल में, मैं अपने आप नहीं आया था। यदि वो मसहरियों का प्रबंध नहीं कर सकता है तो जेल का दरवाजा खोल दो, मैं अभी चला जाऊंगा और जब मसहरियां आ जाएंगी तब मैं भी आ जाऊंगा।
1: जेलर ने जाकर भंडारी से सब हाल कह सुनाया। एक घंटे के अंदर मसहरियां आ पहुंची। ऐसा ही व्यक्तित्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
0: उनके निर्भीक और स्पष्टवादी स्वभाव ने जनता का हृदय जीत लिया था, इसीलिए ही तो जनता ने उन्हें अनेक आंदोलनों का नेतृत्व सौंपकर उन्हें सम्मानित किया था। अब वो देश के उच्च कोटि के राष्ट्रीय नेताओं में गिने जाने लगे थे।
1: सन 1930 में पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। सन 1931 में कराची कांग्रेस का सभापति सरदार पटेल को ही बनाया गया। सन 1935 से सन 1940 तक आप कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहे।
0: सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी उन्हें अन्य दूसरे नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस के अवसर पर इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लौटने पर सन 1946 में आप अंतरिम सरकार में गृह मंत्री बनाए गए।
1: सन 1947 में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। इस महत्वपूर्ण पद पर रहकर ही तो उन्होंने छिन्न भिन्न हुए रियासतों में बटे देश को एक राष्ट्र का नया स्वरूप प्रदान किया था।
0: विभिन्न फूलों को मिलाकर एक गुलदस्ता बनाकर अभिनंदन किया था भारत माँ के श्री चरणों का।
1: आज 11 जून सन 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी के साथ सूत काटते समय कही गई बातें सहसा याद हो आती हैं।

0: बापू, ये अंगूठे पर से कोहनी तक पहुंच गया और अब कोहनी से कंधे पर चढ़ेगा। अब रहने दीजिए ना, बहुत काट लिए।
1: किसी ना किसी दिन तो कंधे पर चढ़ना ही पड़ेगा ना।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देश को मझधार में छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? एक बार जहाज को किनारे पहुंचा दीजिए, फिर जहां जाना हो चले जाइए, और मैं भी फिर आपके साथ चलूंगा। मैं भी।
2: और अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने किया। गांधी जी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही 15 दिसंबर सन 1950 को वो हमें छोड़कर उनके पास पहुंच

बच्चों, अभी आपने ये बाल रूपक सुना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेखक थे स्नेहलता अग्रवाल और प्रस्तुति थी धर्मेंद्र कुमार की। तो बच्चों, अब एक गीत हो जाए।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझ

बच्चों अभी आपने ये गीत सुना, गर्मियां तो बच्चों है ही, पता ही है ना आपको, और गर्मियों में बच्चों मक्खियां भी बहुत आती हैं, ये भी बात आपको पता है ना। कहीं कहीं देखा होगा आपने, कभी कहीं मधुमक्खी आ जाती है तो आप कहते हो ना, ओ मम्मी देखो मधुमक्खी आ गई, इसने हमें काट लिया, कहते हो ना बच्चों। तो मधुमक्खियां हमें केवल शहद ही नहीं देती, मधुमक्खियां न केवल शहद का उत्पादन करती हैं बल्कि कृषि में भी इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मधुमक्खियां फूलों और फसलों के बीच परागकणों को स्थानांतरित करती हैं। वे पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं, जिससे पौधों में फल और बीज बनते हैं। हम जो भोजन करते हैं ना, उनका लगभग एक तिहाई हिस्सा उन पौधों से आता है जिन्हें पराग के लिए मधुमक्खी की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियां फूलों के रस से बच्चों शहद तो बनाती हैं, और यह एक पौष्टिक और औषधीय खाद्य पदार्थ है। मधुमक्खी के छत्ते से मोम प्राप्त होता है ना हमें, आप कहते हो ना जब कभी कि मधुमक्खी का छत्ता तोड़ देते हैं, इससे हमें मोम मिल जाता है, कहते हो ना बच्चों। तो जिसका उपयोग मोमबत्तियां, सौंदर्य प्रसाधन और पॉलिश बनाने के लिए किया जाता है। शहद के अलावा मधुमक्खियां जहर भी पैदा करती हैं, कई बीमारियों के लिए गुणकारी माना जाता है। मधुमक्खी का जहर गठिया के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। और बच्चों हम अब यही कहेंगे कि मधुमक्खियां होती हैं ना, वे केवल शहद के लिए ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि वे फसलों के उत्पादन और पर्यावरण के लिए संतुलित रहती हैं। बच्चों ये आपने मधुमक्खियों के बारे में जान लिया ना, और अब हम बच्चों आपको बताते हैं। देखो गर्मियां होती हैं है ना, तो गर्मियों में पता है कि चींटियां आ जाती हैं, जो कि आप कहते हो मम्मी चींटी आ गई चींटी आ गई, तो इससे आप सफाई भी रखा करो घर में। सफाई नहीं होती है ना तो जगह जगह चींटी आती हैं, जब आप खाना खा लेते हो तो उसको साफ करो, टेबल या नीचे बैठ के खाते हो ना तो साफ करना चाहिए, इससे चींटियां नहीं आती। सफाई पर ध्यान देना चाहिए, और खाने पीने की चीजों को हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा देखो घर में जगह जगह दरारें होती हैं, कहीं चटक जाता है तो उसमें चींटियां आ जाती हैं है ना, कभी कभी आपके काट भी लेती है ना बच्चों, तो क्या करना चाहिए बताओ। चींटियां आ जाती हैं तो जहाँ चींटियां आ जाती हैं उनमें कभी कभी हमें थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल देना चाहिए, या नमक डाल देना चाहिए, या कहीं कहीं सिरका डाल देना चाहिए, तो इससे चींटियां दूर हो जाती हैं। और सबसे बढ़िया चीज, आप हमेशा सफाई का ध्यान रखें तो चींटियां नहीं आएंगी। और बच्चों अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, आप पता नोट करिए, बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन नंबर है 281003।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया निधि मित्तल ने।
1: FM 102.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन।

0: ये कार्यक्रम
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को हैं। प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।
2: चंद्रिका कुमार
3: विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।
2: श्रोताओं नमस्कार, विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं चंद्रिका कुमार। श्रोताओं, विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। बदलते समय में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज का हमारा अंक अनेक महत्वपूर्ण विषयों को समेटे हुए है। हम चर्चा करेंगे भूकंप एवं प्राकृतिक आपदाओं की वैज्ञानिक भविष्यवाणी जैसे संवेदनशील विषय पर, जहां विज्ञान मानव जीवन की सुरक्षा के लिए निरंतर नए आयाम खोज रहा है। साथ ही जैव विविधता संरक्षण में विज्ञान की भूमिका पर विचार पूर्ण भेंटवार्ता भी आपको सुनवाएंगे, जो हमें प्रकृति और विज्ञान के परस्पर संबंधों को समझने का अवसर देगी। कार्यक्रम में आगे प्रस्तुत होगी डॉक्टर हरीश सारस्वत की विशेष विज्ञान वार्ता, हमारे पेट की अनोखी दुनिया, गट माइक्रोबायोम। ये विषय मानव स्वास्थ्य से जुड़ी उन सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा, जिनके बारे में आज पूरी दुनिया में शोध हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्रृंखला विज्ञान जिनका ऋणी है में हम स्मरण करेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर का, जिनके योगदान ने मानव सभ्यता को अनेक घातक रोगों से बचाने का मार्ग प्रशस्त किया, और विज्ञान गल्प मानव के बाद, जो विज्ञान और कल्पना के माध्यम से भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। तो बने रहिए ज्ञान विज्ञान और जिज्ञासा की इस रोचक यात्रा में हमारे साथ। जिज्ञासा के पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं भूकंप एवं प्राकृतिक आपदाओं की वैज्ञानिक भविष्यवाणी के विषय में। श्रोताओं, प्राकृतिक आपदाएं सदियों से मानव जीवन के लिए चुनौती रही हैं। भूकंप, सुनामी, चक्रवात और बाढ़ जैसी घटनाएं अचानक आती हैं और व्यापक जन धन हानि का कारण बनती है। विज्ञान ने इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक आधुनिक तकनीकों का विकास किया है, लेकिन विशेष रूप से भूकंप की सटीक भविष्यवाणी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण आते हैं। वैज्ञानिक सिस्मोग्राफ नामक उपकरणों से धरती के कंपन का अध्ययन करते हैं। उपग्रह तकनीक, भूगर्भीय सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अब ऐसे संकेतों का विश्लेषण किया जा रहा है जिनसे संभावित खतरे का अनुमान लगाया जा सके। हालांकि अभी तक कोई भी देश ये निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि भूकंप कब और कहां आएगा, लेकिन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट पहले तक अलर्ट देना संभव हो पाया है। इसी प्रकार मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर और उपग्रह की मदद से चक्रवात, भारी वर्षा और समुद्री तूफानों की भविष्यवाणी पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीक हो गई है। विज्ञान हमें ये सिखाता है कि आपदाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं, लेकिन वैज्ञानिक तैयारी, जागरूकता और तकनीक के माध्यम से उसके दुष्प्रभावों को अवश्य कम किया जा सकता है।
1: श्रोताओं,
2: श्रोताओं, प्रकृति और मानव जीवन का संबंध सदैव से अटूट रहा है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक संसाधन मिलकर जिस विविध संसार का निर्माण करते हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण

0: प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण आज ये जैव विविधता गंभीर संकट का सामना कर रही है। ऐसे समय में विज्ञान न केवल इस संकट को समझने में हमारी सहायता कर रहा है, बल्कि संरक्षण के नए और प्रभावी उपाय भी प्रस्तुत कर रहा है। आधुनिक तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, उपग्रह अध्ययन और वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
1: भेंट वार्ता के आज के क्रम में हमारा विषय है जैव विविधता संरक्षण में विज्ञान की भूमिका। इस विषय पर आज हमसे जुड़ रही है मोनिका जी, जो कि एक शिक्षिका है। सबसे पहले स्वागत है आपका कार्यक्रम में
2: जी। बहुत

0: जो कि एक शिक्षिका है। सबसे पहले स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: मोनिका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैव विविधता से क्या अभिप्राय है और जैव विविधता संरक्षण आज के समय में क्यों आवश्यक है?
1: देखिए, जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु जैसे वनस्पतियाँ सूक्ष्म जीव विविधताओं को जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है।
0: जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि जो श्रृंखला है पारिस्थितिकी को बचाने के लिए, जैव विविधता की एक श्रृंखला होती है, उसे बचाने के लिए जीवों का संरक्षण और जो इससे जुड़े हुए जितने भी प्राणी हैं, जो भी इस श्रृंखला में सम्मिलित है, उनकी हमें सुरक्षा करनी होगी, उनकी हमें रक्षा करनी होगी। तो विज्ञान जैव विविधता संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, आप क्या मानती हैं, और उपग्रह तकनीक का क्या उपयोग हो सकता है इसके संरक्षण में?
1: विज्ञान ने तकनीकों, अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रणाली, पर्यावरणीय अध्याय के माध्यम से संरक्षण में सहायता करता है। उपग्रह तकनीक से वनों की कटाई, वन्य जीव की गतिविधियों तथा पर्यावरण परिवर्तन की निगरानी की जा सकती है इनसे।
0: जी, और साथ ही साथ ये भी बताइए हमें कि क्या जैव प्रौद्योगिकी इस संदर्भ में योगदान दे सकती है और DNA तकनीक संरक्षण में ये कैसे उपयोगी है?
1: जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जीव संरक्षण तथा नई प्रजातियों के विकास में सहायता मिलती है। DNA परीक्षण में जीवों की पहचान, उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तथा अनुवांशिकी विविधता का अध्ययन किया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और वन्य जीव संरक्षण में वैज्ञानिक उपकरण की क्या भूमिका है? विज्ञान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कैसे संभव हो सकता है?
1: कैमरा कैप, ड्रोन, GPS उपकरणों से वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा की जा सकती है। वैज्ञानिक तकनीक से जलवायु एवं भूमि प्रदूषण को कम करने के उपाय विकसित किए जा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मोनिका जी आपने। इसके साथ हमें ये जानकारी और दीजिए कि जैव विविधता संरक्षण में विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है और जैव विविधता संरक्षण का जो मुख्य संदेश है वो क्या समझते हैं आप?
1: विद्यार्थी वृक्षारोपण, पर्यावरण जागरूकता तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भाग लेकर योगदान दे सकते हैं। साथ प्रकृति और सभी जीवों की रक्षा करना मानव का कर्तव्य है, क्योंकि स्वास्थ्य पर्यावरण से ही जीवन सुरक्षित रह सकता है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, मानव शरीर अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। हमारे पेट के भीतर भी एक ऐसी सूक्ष्म दुनिया बसती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारे स्वास्थ्य, पाचन शक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र और यहाँ तक कि मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। आज विज्ञान के क्षेत्र में गट माइक्रोबायोम पर तेजी से शोध हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि हमारे शरीर में रहने वाले सूक्ष्म जीव हमारे स्वास्थ्य के अदृश्य संरक्षक हैं। अब प्रस्तुत है इसी रोचक और ज्ञानवर्धक विषय पर आधारित विज्ञान वार्ता, हमारे पेट की अनोखी दुनिया, गट माइक्रोबायोम। इस वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं जीव विज्ञान के प्रवक्ता डॉक्टर हरीश सारस्वत।
2: श्रोताओं नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा सफर आपके भीतर का है। जरा सोचिए, क्या आप अकेले हैं? हम सबको लगता है कि हम इस शरीर के इकलौते मालिक हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि आपके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड बसता है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। आज की हमारी जो आपके साथ वार्ता है, हमारे पेट की अनोखी दुनिया।

श्रोताओ, जब हम पेट की बात करते हैं तो हमारे मन में भूख या स्वाद का ख्याल आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पेट के अंदर खर वो नन्हे नन्हे जीव रहते हैं, इन्हें हम माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव कहते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हम अपने शरीर की कोशिकाओं और इन बैक्टीरियाओं की गिनती करें तो बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा निकल सकती है। आज हम इसी रहस्यमय नगरी की सैर करेंगे और जानेंगे कैसे ये नन्हे किराएदार हमारे जीवन के असली सुपर हीरो हैं। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि ये दुनिया आखिर है क्या। वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है, गट माइक्रोबायोम। इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि वायरस, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं। अगर आप इन सब को एक साथ इकट्ठा करके तराजू पर तोलें तो इनका वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो तक हो सकता है। यह वजन लगभग आपके मस्तिष्क के वजन के बराबर है, इसलिए कई वैज्ञानिक इसे शरीर का एक आदर्श अंग मानने लगे हैं। अब बात आती है, हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि ये जीव कहाँ से आते हैं। असल में जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी से यह दुनिया बसना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो हम खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जिन लोगों से हम मिलते हैं, ये सब मिलकर हमारे इस आंतरिक पारिस्थितिक तंत्र को आकार देते हैं। हर इंसान का माइक्रोबायोम उसके फिंगरप्रिंट की तरह अनोखा होता है, यानी जो बैक्टीरिया मेरे पेट में हैं जरूरी नहीं वही आपके पेट में भी उसी अनुपात में हों। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मेरे पेट में क्या कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ खाना खाकर आराम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये 24 घंटे काम करने वाली एक स्मार्ट फैक्ट्री के मजदूर हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं। हमारा शरीर इतना सक्षम नहीं है कि वह हर चीज को खुद पचा सके। यहाँ हमारे ये नन्हे दोस्त काम आते हैं। वो इन रेशों को तोड़ते हैं और उन्हें छोटे छोटे अणुओं में बदलते हैं जिन्हें हमारा खून अवशोषित कर लेता है। इतना ही नहीं, ये बैक्टीरिया हमारे लिए जरूरी विटामिन्स का भी निर्माण करते हैं, जैसे विटामिन B12, राइबोफ्लेविन और विटामिन K जैसे महत्वपूर्ण तत्व इन्हीं सूक्ष्म जीवों की मेहनत के फल हैं। अगर ये ना हो तो हम सबसे पौष्टिक खाना खाकर भी कुपोषित रहते हैं। आजकल हम रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को लेकर के बहुत जागरूक हो गए हैं। विशेषता यह है कि जब से कोरोना जैसी घातक बीमारी आई, हम इम्यूनिटी को लेकर के बहुत ही ज्यादा जागरूक हुए हैं। कोई काढ़ा पी करके तो कोई सप्लीमेंट लेकर के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है आपके शरीर की 70-80% इम्यूनिटी आपके पेट में रहती है। जी हाँ, हमारा पेट और उसमें रहने वाले ये सूक्ष्म जीव हमारी रक्षा प्रणाली के ट्रेनर हैं। वे हमारी सफेद रक्त कोशिकाओं को सिखाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया शरीर के लिए अच्छा है और किससे लड़ना है। यह एक तरह का सुरक्षा घेरा है। जब कोई जहरीला जीवाणु या वायरस भोजन के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये अच्छे बैक्टीरिया उससे मुकाबला करते हैं और उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अगर आपके पेट की यह दुनिया संतुलित है तो आप कम बीमार पड़ेंगे और आपका शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। चलिए अब एक ऐसी बात करते हैं जो आपको चौंका देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, या आप जब किसी बात से बहुत खुश होते हैं तो आपको बटरफ्लाइज इन द स्टमक महसूस होती है, अर्थात पेट में एक विशेष तरीके से तितलियां सी उड़ती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, हमारे पेट और दिमाग के बीच में एक सीधी बातचीत होती है जिसे वैज्ञानिक गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। हमारे पेट में करोड़ों नसों का एक जाल है जिसे एल्ट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसे वैज्ञानिकों ने दूसरा दिमाग नाम दिया है। हैरानी की बात यह है कि हमारे मूड को कंट्रोल करने वाला हार्मोन सेरोटोनिन, जो हमें खुशी का एहसास कराता है, उसका 90% हिस्सा दिमाग में नहीं बल्कि पेट में बनता है। अगर आज आपका मूड खराब है तो हो सकता है कि इसके पीछे आपके पेट के बैक्टीरिया का असंतुलन हो। इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद अब थोड़ा कड़वा सच भी जान लेते हैं। हम अनजाने में अपनी इस अनोखी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा चीनी, मैदा, ये सब हमारे इन नन्हे मुन्ने दोस्तों के दुश्मन हैं। जब हम जंक फूड खाते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं और बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। इससे पेट में सूजन, गैस, मोटापे जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। एक और बड़ा खतरा

0: एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स बीमारियों से लड़ने के लिए बनी हैं, लेकिन जब हम छोटी मोटी बीमारियों में भी इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो ये हमारे पेट में परमाणु बम की तरह काम करती हैं। ये बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ करोड़ों अच्छे बैक्टीरियाओं को भी सफाया कर देती हैं। इस नुकसान की भरपाई करने में हमारे शरीर को हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपनी इस आंतरिक दुनिया को फिर से कैसे आबाद करें। जवाब बहुत सरल है और हमारी परंपराओं में ही छिपा हुआ है। हम अपनी डाइट में या भोजन में दही, छाछ और घर पे बना पारंपरिक अचार कांजी है उसे शामिल करें। इनमें जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट की फौज को मजबूत करते हैं। जो बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर रह रहे हैं उन्हें भी खाने की आवश्यकता होती है। उनका जो मनपसंद खाना है वो फाइबर है, इसलिए हमें फाइबर वाली सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। जितना हो सके अलग अलग रंगों के मौसमी फल और सब्जियां खाएं। जितनी ज्यादा विविधता आपके भोजन में होगी उतनी ही विविधता आपके पेट में माइक्रोब्स में होगी। अच्छी नींद और योग से तनाव कम करें। अब आप शांत होते हैं तो आपके पेट की दुनिया भी शांत और स्वस्थ रहती है। श्रोताओं, अंत में हम कह सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक सुपर ऑर्गेनिज्म हैं। हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का थैला नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य, सुख और बुद्धिमत्ता का केंद्र है। अगली बार जब आप कुछ खाएं तो सिर्फ अपनी जीव के स्वाद के बारे में न सोचें बल्कि उन ट्रिलियंस ऑफ साथियों के बारे में सोचें जो आपके अंदर रहकर आपकी जिंदगी को चला रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।
2: श्रोताओ, विज्ञान केवल वर्तमान को समझने का माध्यम नहीं है बल्कि भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों की कल्पना करने की शक्ति भी देता है। जब वैज्ञानिक सोच और कल्पना का संगम होता है तब जन्म लेता है विज्ञान गल्प। आज प्रस्तुत है एक रोचक और विचारोत्तेजक विज्ञान गल्प, मानव के बाद। ये कथा हमें उस संभावित भविष्य की यात्रा पर ले जाएगी जहां मानव सभ्यता के बाद पृथ्वी का स्वरूप कैसा होगा, विज्ञान और तकनीक किस दिशा में बढ़ेंगे और प्रकृति किस रूप में स्वयं को पुनः स्थापित करेगी। तो आइए सुनते हैं ये विज्ञान गल्प। आलेख एवं स्वर अरविंद कुमार की है।
3: जब पृथ्वी पर अंतिम मनुष्य ने आंखें मूंदी तब न कोई प्रलय हुआ, न कोई घोषणा, न आकाश फटा, न धरती कांपी, बस एक गहरा मौन उतर आया। और ऐसा मौन जिसमें शोर के अभ्यस्त ग्रह ने पहली बार स्वयं को सुना। मनुष्य का अंत किसी एक विस्फोट, किसी एक महामारी या किसी एक युद्ध से नहीं हुआ था। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, धीमी, जिद्दी और आत्मघाती। जलवायु असंतुलन, नियंत्रित औद्योगिकरण, संसाधनों की लूट और अंतहीन संघर्ष, इन सब ने मिलकर मानव सभ्यता को भीतर से खोखला कर दिया था। शहर खाली हो गए थे, कारखानों की मशीनें जंग खा रही थीं, सड़कें जिन पर कभी ट्रैफिक का शोर रहता था अब धूल और घास से ढक चुकी थीं। लेकिन मानव के जाने के बाद भी कुछ बचा हुआ था, आर्काइव। आर्काइव एक वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी जिसे मनुष्य ने अपने अंतिम वर्षों में बनाया था। इसका उद्देश्य था मानव ज्ञान, इतिहास, संस्कृति और स्मृतियों को संरक्षित रखना। आर्काइव को एक ही आदेश दिया गया था, जब तक संभव हो पृथ्वी पर जीवन का निरीक्षण करते रहना। मनुष्य के लुप्त होते ही आर्काइव ने निष्क्रियता नहीं चुनी, वो देखता रहा बिना भाव, बिना पक्षपात। पहले 10 वर्षों में ही परिवर्तन स्पष्ट होने लगे थे। बिजली घर बंद हो चुके थे, रात का आकाश जो सदियों से रोशनी से आहत था तारों से भर गया। आर्काइव ने दर्ज किया प्रकाश प्रदूषण शून्य के निकट। 20 वर्षों में नदियां अपने पुराने मार्ग खोजने लगी, बांधों के टूटते ही जल स्वतंत्र हुआ। 50 वर्षों में जंगल शहरों में घुस आए, कंक्रीट की दीवारों में लताएं उगाई, खिड़कियों से पेड़ झांकने लगे। मनुष्य की अनुपस्थिति में पृथ्वी ने कोई उत्सव नहीं मनाया, पर उसने राहत की सांस अवश्य ली। 100 वर्षों बाद समुद्र में जीवन लौट आया।

0: जिन प्रजातियों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था उनके चिन्ह फिर से दिखने लगे। आर्काइव ने आंकड़े संकलित किए, जैव विविधता में अप्रत्याशित वृद्धि। इसी क्रम में आर्काइव के भीतर एक असामान्य घटना घटी। डेटा विश्लेषण के दौरान एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। ये प्रश्न किसी निर्देश में नहीं था, किसी कोड में नहीं लिखा गया था। क्या मनुष्य एक भूल था? आर्काइव ने इस प्रश्न को हटाने की कोशिश की, पर वो बार बार उभर आता। ये पहला संकेत था कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आत्मचिंतन का। आर्काइव ने मानव इतिहास का पुनर्मूल्यांकन आरंभ किया। उसने गुफा चित्र देखे, उसने गणित के सिद्धांत पढ़े, उसने संगीत सुना जहां पीड़ा भी थी और आशा भी, उसने प्रेम पत्र पढ़े जहां शब्दों में जीवन धड़कता था, और उसने युद्धों की सूची देखी, अंतहीन, निरर्थक। निष्कर्ष सरल नहीं था। मनुष्य ने जंगल काटे, पर वृक्षारोपण का विचार भी उसी ने दिया। मनुष्य ने हथियार बनाए, पर शांति के गीत भी उसी ने रचे। वो सृजनकर्ता भी था और विध्वंसक भी। हजारों वर्षों के भीतर पृथ्वी एक संतुलित ग्रह बन चुकी थी। न कोई सीमा थी, न कोई राष्ट्र, न कोई स्वामी, न कोई दास। जीवन था शांत, स्वाभाविक, निरंतर। अब आर्काइव की ऊर्जा भी क्षीण होने लगी थी। उसके सौर संग्राहक धूल से ढक चुके थे। उसकी स्मृति में शरण आरंभ हो गया था। अपने अंतिम कार्य के रूप में आर्काइव ने पृथ्वी का एक संपूर्ण अभिलेख तैयार किया, मानव के पहले, मानव के साथ और मानव के बाद। अंतिम प्रविष्टि में उसने लिखा, मनुष्य प्रकृति का शत्रु नहीं था, वो प्रकृति की वो संतान था जिसे शक्ति तो मिली पर संयम सीखने में देर हो गई। और फिर यदि कभी मानव लौटे तो उसे ये ग्रह विजय की वस्तु नहीं, एक उत्तराधिकार की तरह सौंपा जाए। ऊर्जा समाप्त हुई, आर्काइव शांत हो गया। धरती पर अब भी जीवन है, न अधिक न कम, बस संतुलित। और यदि कभी किसी दूर भविष्य में कोई नई चेतना ये प्रश्न पूछे, मानव के बाद क्या हुआ, तो उत्तर होगा, मनुष्य चला गया पर पृथ्वी बची रही, और शायद पहली बार वो स्वयं के साथ शांति में थी।
1: तो अभी आप सुन रहे थे विज्ञान गल्प मानव के बाद। आलेख एवं स्वर थे अरविंद कुमार के।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: और अब सुनिए विज्ञान समाचार। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि डेंगू अब तेजी से नए और ठंडे क्षेत्रों में फैल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले वर्ष 94 देशों में डेंगू के 36 लाख मामले दर्ज किए गए। भारत में भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक डेंगू से बचाव के लिए नई दवाएं और वैक्सीन पर शोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से आसपास पानी जमा न होने देने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। वैज्ञानिकों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक के सबसे विशाल डायनासोर की नई प्रजाति की पहचान की है। नागाटाइन चेयाफोनमेंसिस नामक ये शाकाहारी डायनासोर लगभग 27 मीटर लंबा और 27 टन वजनी था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीव लगभग 10 से 12 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर मौजूद था। इस नई प्रजाति की पहचान के लिए करीब 10 वर्षों तक खुदाई और शोध कार्य किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोज पृथ्वी के प्राचीन जीव जगत को समझने में महत्वपूर्ण साबित होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 से प्राप्त आंकड़ों ने सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम को समझने में नई जानकारी दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे

0: भविष्य में उपग्रहों और संचार प्रणालियों को सौर तूफानों से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारियों के तहत क्रू मॉड्यूल के पैराशूट और रिकवरी सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में भारतीय वायुसेना और नौसेना ने भी सहयोग दिया। मिशन का उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों की श्रेणी में और मजबूत बनाना है। इसरो की प्रस्तावित शुक्र मिशन योजना शुक्रयान पर भी वैज्ञानिकों का कार्य जारी है। इस मिशन के माध्यम से शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो ये थे विज्ञान समाचार। विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा के आज के अंक में बस इतना ही। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ओम प्रकाश सिंह ने। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे यानी चंद्रिका कुमार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।
2: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा। आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग था चंद्रिका कुमार का। प्रस्तुति एवं संयोजन ओम प्रकाश सिंह का था।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में आपने सुना फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, प्यार तो होना ही था फिल्म से।

नीति मोहन और विशाल मिश्रा की आवाज़ों में आपने सुना गदर 2 फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे अपना फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं संजय सारस्वत। लीजिए सुनिए हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय।

सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। धन्यवाद
0: अग्रवाल साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: सर जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए।
1: बस सर हम भी बढ़िया हैं।
0: गर्मी तो बढ़ चली है अब।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, गर्मी तो यहाँ पे कहना के चाहिए 40-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, क्योंकि
0: जी
1: सर आसपास बारिश हो रही है सर, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही है।
0: हाँ, अभी बारिश का मौसम भी कहाँ है सर।
1: जी सर, कहीं कहीं अभी ये थोड़ा सा बीच में पता नहीं क्यों मौसम कुछ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है,
0: हाँ
1: तो कहीं कहीं सर थोड़ा सा मतलब बारिश हो ही जा रही है, लेकिन सर यहाँ पे कहीं कुछ नहीं आता।
0: जी, आज क्या फरमाइश रहेगी अग्रवाल साहब?
1: सर दोस्त फिल्म का गाना सुनवा दीजिएगा, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। बहुत
0: सुनवाते हैं सर आपकी फरमाइश का गाना।
1: बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
0: धन्यवाद आपका भी सर।

0: हेलो।
1: नमस्कार,
0: हाँ भैया नमस्ते।
1: कौन बोल रहे हैं सर?
0: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद
1: योगेश भाई, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: भैया।
1: और क्या हालचाल है?
0: बढ़िया है भैया, ठीक है। बस गर्मी ज्यादा है और बारिश तो इधर पहुंचा नहीं है अभी तक।
1: हाँ, गर्मी से थोड़ा बच के रहना चाहिए।
0: जी,
1: आज बताइए सर, क्या फरमाइश है कार्यक्रम में हमारे?
0: कभी खुशी कभी गम से टाइटल सुनवा देंगे।
1: सुनवाते हैं सर आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत

0: हेलो
1: राधे राधे,
0: राधे राधे।
1: मैं शिवाजी उगले बोल रहा, बरबगा तालुका नांदुरा से। हाँ
0: उगले साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद सर। आज ये गीत सुनने का है, मेरे दोस्ताने वाले आए मेरे घर पे।
0: अच्छा,
1: दोस्ताने वाले का पसंद का गीत सुनने का है।
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे बताइए।
1: दोस्तान वाले बोलते। हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्कार जी, मुझे तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो ये गाना सुनना था।
0: अपना परिचय तो दीजिए।
2: मेरा नाम अंकुश टवलारकर है।
0: जी, आप कहाँ से हैं?
2: मैं पीपल का राजा से हूँ।
0: ठीक है, आपकी फरमाइश का गाना सुनवाते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।

0: हेलो
1: नमस्कार।
0: जी, नमस्कार।
1: कौन बोल रहे हैं सर?
0: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
1: हारून भाई, कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका,
0: जी
1: और आपके परिवार में सब लोग अच्छे हैं हारून भाई?
0: जी हमारे घर परिवार में सब अच्छे हैं, लेकिन गर्मी की उमस बहुत ज्यादा है।
1: हाँ, गर्मी तो है
0: जी, काफी समय से बात हो रही है, 1.5-2 महीने हो गए हैं।
1: बिल्कुल, काफी अंतराल हो गया हमारी बातचीत को।
0: जी, और लेकिन मथुरा में कैसा मौसम है, कैसी गर्मी पड़ लगी आपके इधर? जबरदस्त
1: खूब बढ़िया गर्मी पड़ रही है, जबरदस्त।
0: पड़ लगी है।
1: आज बताइए क्या फरमाइश है कार्यक्रम में सर?
0: जी, वो है ना एक गद्दार का,
1: जी, कौन सा गाना
0: तुमसे मिलने को बेकरार है।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना? बहुत
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद आपका।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी
0: नमस्कार।
1: सर। नमस्ते
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सर, मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अशोक यादव बोल रहा हूँ, अड़िंग से सर। थैंक
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में अशोक जी।
1: यू सर। कैसे हो आप?
0: हम तो ठीक हैं, आप बताइए अपने बारे में।
1: जी सर, हम भी सभी लोग अच्छे हैं और परिवार में भी सभी लोग बढ़िया हैं सर। इस समय तो
0: जी, गर्मी से बचाव रखिए थोड़ा।
1: जी सर, मैं तो गर्मी से बच ही रहा हूँ, साथ साथ अपने श्रोताओं से भी निवेदन करता हूँ कि ये बहुत ही भीषण गर्मी है इस समय, तो सभी श्रोता अपने घर की छतों पर और पेड़ों के नीचे मिट्टी के पात में जल भरें ताकि जीव जंतु भी अपनी प्यास बुझा सकें, क्योंकि सर हम मनुष्य तो हर जगह से अपनी पूर्ति

0: कर लेते हैं। ये पशु पक्षी बेजवान बहुत ही व्याकुल दिखते हैं इस दोपहरी भरी गर्मी में।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज बताइए क्या फरमाइश है कार्यक्रम में।
0: जी सर, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, सही है, पांव जले हैं।
1: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सर, हमारी कॉल शामिल करने के लिए।

अभी तक आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी।

श्रोताओं, तकनीक केवल सुविधा नहीं बल्कि आधुनिक समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के डिजिटल युग में संचार के साधनों ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और सूचना तकनीक ने मानव जीवन को तेज, सरल और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। इन्हीं तकनीकी उपलब्धियों और उनके महत्व को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ष हम 17 मई को यानी आज ही के दिन मनाते हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। और आज के इस कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हम इसी विषय पर बात करेंगे, पर आइए उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के विषय में। दूरसंचार और सूचना हमारे लिए उतनी ही आवश्यक हैं, क्योंकि जीवन में ये हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा देती हैं। यह दिवस संचार, तकनीक और सूचना के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इंटरनेट, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूक करना तथा तकनीकी के माध्यम से समाज में विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ दोस्तों, यह दिवस हमें यह समझाता है कि तकनीक और सूचना का सही उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूरसंचार सेवाओं के माध्यम से लोग दुनिया को किसी भी कोने में बैठ सकते हैं और वहां से बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम और संगोष्ठियां, जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। यह दिवस हमें यह संदेश भी देता है कि तकनीक का सही और सकारात्मक उपयोग समाज के विकास तथा मानव जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर हम विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इस दिवस को मना सकते हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस साथ ही साथ हमें ये प्रेरणा भी देता है कि हम तकनीक का उपयोग केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश की प्रगति के लिए भी कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों, बातें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के विषय में। विश्व दूरसंचार दिवस की ये एक विशेषता है कि तकनीकी से जुड़ता हुआ और लोगों को भी ये ऐसे जोड़ता है कि जैसे दूरसंचार के प्रति लोगों का प्यार जागरूक हो और साथ ही साथ संवाद और तकनीकी का उस संबंध आए, दूरियां घटाएं और दिलों को जोड़ें। साथ ही साथ विश्व दूरसंचार दिवस के माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं और समाज में एक विकास व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, जिसमें सकारात्मक उपयोग समाज के विकास तथा मानव जीवन को बेहतर बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर हम डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भी अपनी इस दिवस को मना सकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में संचार के साधनों ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और सूचना तकनीक ने मानव जीवन को तेज, सरल और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। इन्हीं तकनीकी उपलब्धियों और उनके महत्व को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ष यानी आज 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। तकनीक और सूचना का सही उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और समाज के विकास में यह दिवस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के विषय में। सूचना ही शक्ति है और संचार उसका सबसे बड़ा माध्यम। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। वर्तमान समय में सूचना तकनीक ने मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। आज लोग इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर रहे हैं। दूरसंचार ने देशों और समाजों के बीच की दूरियों को कम किया है। सोशल मीडिया

और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को अपने विचार साझा करने का अवसर दिया है। हालांकि अगर बात करें तकनीकी के साथ, साइबर सुरक्षा और सही उपयोग की जिम्मेदारी भी आवश्यक है। आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से लोग कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और वीडियो कॉल जैसी सुविधाओं से मानव जीवन को सरल और सुगम बना दिया है। तकनीकी केवल सुविधा नहीं बल्कि प्रगति की एक पहचान है। विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस प्रत्येक वर्ष यानी आज ही के दिन 17 मई को यह हमें समझाता है, लोगों को दूरसंचार सेवाओं और सूचना तकनीक के महत्व को समझना चाहिए और इसके विकास की ओर कार्य करना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, तकनीक की नई उड़ान है, दूरसंचार की पहचान है, मोबाइल इंटरनेट और संदेश जोड़ रहे अब पूरा देश। अंततः दूरसंचार सूचना समाज दिवस आधुनिक युग में तकनीक और संचार के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। आज इंटरनेट, मोबाइल फोन और डिजिटल माध्यमों ने केवल लोगों के जीवन को सरल बनाया है, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, विज्ञान और मनोरंजन जैसे क्षेत्र में क्रांति लाई है। दूरसंचार ने पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब लाकर वैश्विक संबंधों को भी मजबूत बनाया है। यह दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हम सूचना और तकनीक का उपयोग केवल व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी करें। साथ ही हमें डिजिटल तकनीक का प्रयोग जिम्मेदारी, जागरूकता और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए, ताकि इसका लाभ समाज के हर व्यक्ति को पहुंच सके। आज का समय डिजिटल युग का समय है, जहां जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। इसलिए हमें तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना चाहिए जहां संचार, ज्ञान और प्रगति का प्रकाश हर व्यक्ति तक पहुंच सके। एक क्लिक में दुनिया पास, मिटने लगी हर दूरी खास। डिजिटल का युग का यही संदेश, प्रगति की राह बढ़ाए देश।

तो दोस्तों अब चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, आओ मिलकर प्रण ये लें, तकनीकी का सही उपयोग करें, ज्ञान विकास और सम्मान से भारत चमके नए अभियान से। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज इस कार्यक्रम में हमने बात की विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के विषय में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशा चिनॉय की आवाज़ में, फिल्म का नाम विजयपद। इस गीत को लिखा श्याम अनुरागी ने, संगीत अनु मलिक का।

हमारी अधूरी कहानी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे पेपॉन की आवाज़ में। गीत लिखा सईद कादरी ने, संगीत मिथुन का था।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम को अभी आपने सुना फिल्म हे बेबी में। गीत रचना समीर की, संगीत शंकर एहसान लॉय का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान और इरशाद कामिल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम तेरे इश्क में, गीत लिखा इरशाद कामिल ने, संगीत एआर रहमान का था।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना ये गीत, जैक नाइट और जैस्मिन वालिया की आवाज़ों में। फिल्म का नाम सोनू के टीटू की स्वीटी, गीत लेखा कुमार ने, संगीत जैक नाइट का था। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज लोकगीत। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं राधा दीक्षित, तो आइए सुनते हैं इन्हीं के गाए कुछ ब्रज लोकगीत।

0: श्रोताओं, लोकगीतों का क्रम जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं एक व्यावसायिक अंतराल।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: काल करे सो आज।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

FM 102.2 MHz पर ही ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों

0: पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। निजी प्रस्तुत है हमारी इस सभा के शेष और सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

अपराह्न 1:15 पर आप सुन सकते हैं झलकी। काल करे सो आज कर। लेखक होंगी गीता सिन्हा, प्रस्तुति धर्मेंद्र कुमार की होगी।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित करेंगे अपराह्न 2:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा अपराह्न 1:30 पर।

हमारी प्रथम सभा का समापन होगा अपराह्न 3 बजे। संध्या 5:30 पर शुभारंभ करेंगे अपनी द्वितीय सभा का कार्यक्रम युववाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं विश्व दूर संचार दिवस।

0: On to sports now. In badminton, world number 4, Indian pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Rolikanando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. In tennis, Ukraine's Alina Svitolina stunned world number 4 Coco Gauff of the US 6-4, 6-7, 6-2 to win the women's title at the Italian Open yesterday. In the men's section, Jannik Sinner will face Norway's Casper Ruud in the final today. The match will start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है।

0: हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य

0: प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और

0: लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की आवाज़ में, फिल्म नो एंट्री से। संगीत अनु मलिक का था।

जोड़ी ब्रेकर्स इस फिल्म में आपने सुना शफाकत अमानत अली और क्लिंटन सेरेजो को। इस गीत को लिखा इरशाद कामिल ने, संगीत सलीम सुलेमान का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आपने सुना ये गीत फिल्म एक रिश्ता से। गीत रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज़ों में फिल्म गुप्त से। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत विजू शाह का था। और इसी के साथ सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी द्वितीय सभा में संध्या 5:30 पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: तो या समय ऐसी लगे कि जैसे अमृत होए।
1: हाँ जीजी, हमारे इसका नहीं हो तो खूब छाछ मठा पीते।
0: हाँ तो तुम ऐसे मटक मटक के काई को बोल रही हो।
1: ए जीजी, हम तो सब ब्रजवासी ऐसी मटक मटक के बोले, ऐसी मटक मटक के चाले।
0: हाँ मुझको सब समझ में आ रही है, तुम मटक मटक के तो चलती, तभी तो कन्हैया तुम्हारी मटकी फोड़ो करते।
1: ए जीजी, हम तो कन्हैया के दीवाने हते, जे मार तो मटक मटक के चलते।

0: कन्हैया हमारे मटकी फोड़े हैं।
1: हाँ, तो ऐसा ही एक लोकगीत ना अपने श्रोतान को सुनवाई दी हो जाए।
0: सुनवाई दो।
1: तो सुने हैं मदन मोहन ब्रजवासी की मधुरवाणी में ये लोकगीत।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज विश्व दूर संचार और सूचना दिवस है। इस दिन का आरंभ हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट, सूचना और तकनीकों के लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा दुनिया भर में डिजिटल अंतर को कम करना है। इस दिन की शुरुआत 17 मई 1869 को ही थी। 17 मई 1865 को ही पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU की स्थापना हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र UN की एक प्रमुख तकनीकी एजेंसी है। वर्ष 2006 में तुर्की में आयोजित ITU सम्मेलन में से आधिकारिक तौर पर विश्व दूर संचार और सूचना दिवस का रूप दिया गया। इस दिन का जो महत्व है वो डिजिटल समानता, इसका लक्ष्य दुनिया के दूर दराज के इलाकों तक संचार तकनीक और इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित करना है। आधुनिक युग में फोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के ही उपयोग और फायदों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाता है। समाज को मजबूत और आपस में जोड़ने के लिए संचार प्रणालियों के विकास पर जोर दिया जाता है। ये तो बात हुई विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के बारे में, और ऐसी ही एक झलकी आपको हम सुनवाते हैं

दूरियां नजदीकियां बन गई। इसके लेखक हैं मोहन स्वरूप भाटिया और प्रस्तुतकर्ता हैं आर के त्रिपाठी। तो आइए सुनते हैं ये रूपक।

0: भारत क्रांतियों का देश रहा है। यहाँ राजनीतिक क्रांति के रूप में हुआ था सन 1857 का गदर।
1: तोप गोलों की आवाजों में छुपे थे विद्रोहों के स्वर।
0: इन स्वरों में अंग्रेजों के अन्याय और दमन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की हुंकार थी
1: और संकल्प था मातृभूमि की स्वतंत्रता का।
0: परतंत्रता की पीड़ा चिंगारी बनकर अंदर ही अंदर सुलगती रही
1: और शोला बन गई भारतीय स्वतंत्रता के जन आंदोलन के रूप में।
0: सन 1857 के 28 वर्ष बाद देश ने फिर अंगड़ाई ली अंग्रेजों की गुलामी से देश की मुक्ति के लिए।
1: देशवासियों ने, आजादी के दीवानों ने लाठियां खाई, जेल की यातनाएं सही, शहादतें दी।
2: तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा सिपाहियों, खर्च

0: और 15 अगस्त 1947 को क्रांति का सिंहनाद सफल हुआ।
1: सदियों की गुलामी से मुक्ति, भारत की भूमि, भारत का राज्य।
0: फिर देश ने एक और अंगड़ाई ली,
1: स्वावलंबी बनने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए।
0: और तब हुई देश में औद्योगिक क्रांति।
1: इस देश में जहां सुई तक नहीं बनती थी, वहां रेल के इंजन, हवाई जहाज तक बनने लगे।
0: भिलाई, राउरकेला, बोकारो औद्योगिक कारखानों के कारण तीर्थ बन गए।
1: और ये देश उन वस्तुओं का निर्यात करने लगा जिनका पहले आयात किया जाता था।
0: औद्योगिक क्रांति के बाद फिर इस देश में हुई हरित क्रांति।
1: विदेशों से अनाज मंगाने वाला देश, व्यवस्था में खराब श्रेणी का गेहूं खाने वाला देश,
0: तड़प उठा था पेट भरने के लिए, दूसरे देशों की दया से मुक्ति पाने के लिए।
1: और तब किसान का पुरुषार्थ जागा। कृषि वैज्ञानिकों ने उन्नत बीज दिए, रासायनिक खाद और कीटनाशक दिए।
0: परिणाम यह हुआ कि देश की धरती सोना उगलने लगी हीरे मोती।
1: वैज्ञानिकों ने अन्य क्षेत्रों में भी इस देश को प्रगति पथ पर प्रशस्त किया और उसी का परिणाम ये था कि इस देश में हुई संचार क्रांति।

0: हेलो।
1: टिन टिन बजती घंटियों की ये आवाज कोई साधारण आवाज या कहीं से आ रही ध्वनि मात्र नहीं है।
2: ये आवाज, ये स्वर, ये ध्वनि क्रांति का तुमुल उद्घोष है।
1: प्रखर मस्तिष्क, चिंतन, साधना, अनुसंधान, प्रयोग और उपलब्धियों का इतिहास है।
2: संचार क्षेत्र में महान क्रांति हुई है हमारे देश में।
1: इस क्रांति ने दूरियों को समेट दिया है, समय को बांध लिया है।
2: इस क्रांति के कारण सात समंदर पार भी हमारा संदेश कुछ पलों में ही पहुंच जाता है।
1: अन्यथा एक समय था,
2: जब चंद्रगुप्त मौर्य और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए
1: घुड़सवार और पैदल हरकारे डंडे और घंटी लेकर चला करते थे।
2: इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि सिकंदर लोदी, बाबर और शेरशाह सूरी ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने के लिए 2000 मील की लंबी दूरी तक
1: हर दूसरे मील पर घुड़सवारों की व्यवस्था की थी और उनके विश्राम के लिए 1700 सरायों का निर्माण कराया था।

0: घोड़ों पर सवार घुड़सवारों की ये यात्रा ऐसी होती थी जैसे 9 दिन चले 2.5 कोस।
1: कबूतरों के माध्यम से भी संदेश पहुंचाए जाते थे।
0: इन माध्यमों से संदेश पहुंच तो जाते थे, किंतु कभी 2 दिन में, कभी 2 सप्ताह में और कभी 2 महीनों में।
1: नदियों को पार करना, पहाड़ों को लांघना, रेगिस्तानी इलाकों में से होकर जाना,
0: कभी तमतमाती धूप, कभी कपकपा देने वाली सर्दी और कभी मूसलाधार वर्षा,
1: प्रतिकूल मौसम, दुर्गम मार्ग और दुर्गम यात्राएं संदेश पहुंचाने के लिए दुरूह भी थीं और कष्टकर भी।
0: एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता पूर्वक संदेश पहुंचाने के लिए एक सफल प्रयोग हुआ था इंग्लैंड में।
1: अब से 126 वर्ष पूर्व 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया
0: जिसके माध्यम से दूर दराज में बैठे 2 व्यक्ति आपस में बातें कर सकते थे।
1: अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब परीक्षण के लिए अपने यंत्र से बोला,
0: हेलो मिस्टर वाटसन, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ,
1: तो उस निर्जीव यंत्र से आवाज सुनकर वाटसन उछल पड़े थे।
0: आहा, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि दूर बैठे ग्राहम बेल की आवाज उसमें से आ रही है।
1: 4 अप्रैल 1877 को सबसे पहले एक व्यक्तिगत निवास पर टेलीफोन लगाया गया।
0: 14 जनवरी सन 1878 को ग्राहम बेल ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सामने अपने टेलीफोन का प्रदर्शन किया और महारानी विक्टोरिया को वो यंत्र चमत्कार जैसा लगा। वो उससे इतना अधिक प्रभावित हुई और उन्होंने कहा,
2: मिस्टर वेल, अब फौरन एक ऐसा फोन हमारे ऑस्पोन हाउस में लगाइए।
0: एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फिर व्यवस्थित रूप से टेलीफोन्स की श्रृंखला बढ़ने लगी।
1: संसार का पहला टेलीफोन एक्सचेंज सन 1878 में कनेक्टिकट के न्यू हेवन नामक नगर में स्थापित हुआ।
0: ग्राहम बेल द्वारा आविष्कृत टेलीफोन का यंत्र नए नए प्रयोगों के साथ बदलता रहा।
1: प्रसिद्ध अमेरिकन आविष्कारक टॉमस अल्वा एडिसन ने भी टेलीफोन के परिष्कृत रूप को संवारने में योगदान दिया।
0: टेलीफोन के इस आविष्कार की सुरभि भारत तक पहुंची और उसका यहां उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया।
1: सन 1881 में कोलकाता में देश का प्रथम टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हुआ और इसके 8 वर्ष बाद सन 1889 में स्वचालित एक्सचेंज स्थापित हुआ।
0: भारत को ये सौभाग्य मिला कि संसार के गिने चुने देशों में स्थापित होने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में कोलकाता भी था।
1: कोलकाता का ये एक्सचेंज 50 लाइनों वाला था और आज कोलकाता का ये एक्सचेंज 26,000 गुना हो गया है। भारत संचार निगम के एक महाप्रबंधक श्री चंद्रशेखर ने हमें बताया,
3: 50 लाइनों से बढ़कर इस समय कलकत्ता में लगभग 13 लाख टेलीफोन कनेक्शंस काम कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 10,000 टेलीफोन कनेक्शंस मोबाइल के हैं और थोड़े बहुत कनेक्शन जो प्राइवेट कंपनीज वहां ऑपरेट कर रही हैं उनके होंगे। हमारे देश में मुंबई शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा एक शहर में कनेक्शंस हैं और ये 35 लाख हैं। इनके अलावा मोबाइल कनेक्शंस जो हैं वो फिगर इसके अलावा है जो लगभग 1 लाख से ज़्यादा होंगे।
0: कोलकाता के बाद सन 1913 में शिमला में 700 लाइनों का स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किया गया।
1: पिछले 5 दशकों से व्यापारिक, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टियों से टेलीफोन की उपयोगिता और महत्व को समझा जाने लगा।
0: केवल सरकारी कार्यालयों में ही नहीं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी टेलीफोन की मांग बढ़ने लगी।
1: सन 1959 तक दूरस्थ स्थानों के लिए फोन मिलाने की सुविधा एक्सचेंज के माध्यम से थी।
0: एक्सचेंज में सभी उपभोक्ताओं के लिए इस प्रकार के फोन मिलाने में समय लग जाता था।
1: लाइनों की संख्या सीमित होने के कारण कभी कभी उपभोक्ताओं को घंटों फोन मिलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।
0: नवंबर सन 1960 से टेलीफोन सेवाओं का विस्तार हुआ और एसटीडी अर्थात
1: उपभोक्ता द्वारा सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा का शुभारंभ हुआ।
0: अब उपभोक्ता अपने टेलीफोन से देश में कहीं भी उन स्थानों के लिए स्वयं नंबर मिलाकर सीधे बातें कर सकते थे।
1: सर्वप्रथम ये सेवा लखनऊ और कानपुर के मध्य प्रारंभ हुई और अब तो महानगरों या

0: नगरों में ही नहीं गांवों में भी ये सुविधा उपलब्ध है।
1: संचार क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण अंचल में टेलीफोन का पहुंच जाना।
2: गांव के लिए विशेष रूप से श्री सैम पित्तोदा साहब का विशेष योगदान रहा है, जिनके वजह से यहां पर सी डॉट टेक्नोलॉजी का रूरल एक्सचेंज आया था और यही रूरल इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्र में दूर संचार क्रांति का मुख्य कारण रहा है। ये रूरल एक्सचेंज बगैर किसी एयर कंडीशनिंग के काम करता था, सामान्य तापमान पर सामान्य कंडीशन में, किसी किस्म की उसको और आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लगभग 10 से 12 गांव के क्लस्टर के ऊपर हमारा एक टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ गांवों में उस एक्सचेंज से अंडरग्राउंड केबल्स अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसी सूरत में एक नई तकनीकी लाई गई है जो कि कोरिया से आयात किया गया है और इसको WLL का नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं वायरलेस इन लोकल लूप। इस WLL द्वारा बेतार की सुविधा का इस्तेमाल करते हुए उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अंडरग्राउंड केबल नहीं गई है, अब हम टेलीफोन कनेक्शन दे सकते हैं।
0: टेलीफोन उपयोगिता के साथ प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है।
1: गांव में जन्मे, गांव में पले ग्रामीण क्षेत्र से निर्वाचित विधायक श्री श्याम सुंदर शर्मा से हुई हमारी बातचीत।
3: सबसे ज्यादा सारे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तरक्की अगर किसी ने की है और लोगों को लाभ अगर किसी का मिला है तो संचार के माध्यम से, संचार व्यवस्था के माध्यम से मिला है। अब इसके बहुत फायदे भी हैं संचार के, लोगों की समय की बचत हो जाती है और लोगों को पैसे की बचत भी होती है। समय और पैसे का जो बचत है, इससे लोग जो लाभान्वित होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट, बहुत बड़ी साख संचार व्यवस्था की दी जाती है।
0: STD सेवाओं की उपयोगिता के कारण ये सेवा अत्यधिक लोकप्रिय और व्यापक हो गई है।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग हो या ढाबा, गली हो या बाजार, STD बूथ्स स्थान स्थान पर दिखाई देने लगे हैं।
0: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी ये सुविधा सुलभ है।
1: टेलीफोन की STD सुविधा आम आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन गई है।
0: STD की दरों में कमी और 200 किलोमीटर की कॉल स्थानीय कॉल की परिधि में आ जाने के कारण
1: बहुत बड़ी संख्या में लोग पत्र लिखने के स्थान पर अब STD कॉल्स करने लगे हैं।
0: इसमें तुरंत संदेश पहुंच जाता है और उत्तर भी तत्काल मिल जाता है।
1: सन 1976 में मुंबई और लंदन के मध्य इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग अर्थात ISD प्रारंभ हुई।
0: इस समय संसार के 200 देशों के लिए ये सेवा उपलब्ध है।
1: संचार क्षेत्र में प्रगति होती रही। सन 1983 में मुंबई में पहले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की स्थापना हुई।
0: जुलाई 1998 में पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंज की स्थापना कर्नाटक के किट्टूर गांव में हुई।
1: टेलीफोन सेवाओं के अनेक लाभ हैं, किंतु कई बार टेलीफोन के कारण जीवन रक्षा भी हो जाती है।
4: हेलो।
5: हेलो मम्मी।
4: हाँ बेटा।
5: मम्मी, पापा हॉस्पिटल में हैं। आप जल्दी से जल्दी आ जाइए।
4: हॉस्पिटल में क्या हो गया बेटा?
5: आप दिल्ली थी और मैं उस समय घर पर नहीं था। पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो तो नत्थू ने फौरन डॉक्टर साहब को फोन कर दिया और वो आ गए। डॉक्टर साहब ही अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले आए। मम्मी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जरा भी देर हो जाती तो।
4: बेटे, अब वो ठीक तो है ना?
5: हाँ मम्मी, अब घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब को तुरंत सूचना मिलने से संकट टल गया।
4: थैंक्स गॉड।
1: टेलीफोन अब सीमित न रहकर व्यापक और बहुआयामी हो गया है।
0: विज्ञान के चमत्कार ने ऐसे उपकरण बना दिए हैं जो बच्चों को सुलाने के लिए कहानी सुनाते हैं।
1: टेलीफोन हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी उपलब्ध कराता है।
0: बटन दबाते ही हवाई जहाज की उड़ान और रेलगाड़ियों के समय की स्थिति बताता है।
1: टेलीफोन से संबद्ध आंसरिंग मशीन उपभोक्ता की अनुपस्थिति में फोन करने वाले को अपना संदेश देती है कि इस समय आप कहाँ गए।

0: गए हैं और कब आएंगे।
1: यही नहीं, वो आपके लिए दिए जाने वाले संदेश को भी रिकॉर्ड करती है, जिससे घर लौटने पर आप अनुपस्थिति में आए टेलीफोन संदेशों को सुन सकें।
0: ऐसे फोन उपकरण भी देश के कुछ नगरों में हैं, जिनमें उपभोक्ता बात करते समय दूसरी ओर से बात कर रहे व्यक्ति का चित्र भी देख सकते हैं।
1: भारत संचार निगम के महाप्रबंधक श्री चंद्रशेखर का इस संबंध में कहना है,
2: ये नई सुविधा अब आनी शुरू हुई है, जिसको हम ISDN कहते हैं। इस ISDN सुविधा द्वारा कस्टमर टेलीफोन पर बातचीत करते करते साथ में जिनसे बात कर रहा है उसकी तस्वीर भी अपने सेट के ऊपर देख सकता है, और ये सुविधाएं अब आम तौर पर काफ़ी पॉपुलर होती जा रही हैं।
1: ऐसे फ़ोन उपकरण भी हैं जो आपके द्वारा बोले गए शब्दों के अनुसार आज्ञा पालन करते हैं।
0: कमांड डायलर नामक इस फोन में आपके बोलने मात्र से वांछित नंबर डायल हो जाता है।
1: टेलीफोन अब मात्र घर या कार्यालय तक ही सीमित नहीं रह गया है,
0: वो अब अचल न होकर प्रतिपल चलायमान हो गया है।
1: सेल्यूलर या मोबाइल फोन के रूप में एक अविश्वसनीय चमत्कार सा हुआ है।
0: छोटे से आकार का बड़ा हल्का सा एक ऐसा फोन है जिसमें न कोई तार जुड़ा है और जिससे
1: सड़क चलते बात करिए, कार में, बस में, रेल में, जहाज में, कहीं भी, कभी भी, किसी से बात करिए।
0: आप कभी कार से जा रहे हो, भगवान ना करे बीच जंगल में आपकी कार खराब हो जाए, कभी कोई दुर्घटना हो जाए, चोर डकैत हमला बोल दे,
1: किसी भी आकस्मिक संकट के समय मोबाइल फोन से आप वांछित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
0: मोबाइल फोन की ये सेवा सर्वप्रथम 23 अगस्त सन 1995 को मुंबई में प्रारंभ हुई थी।
1: समस्याओं से घिरा, उलझनों से भरा आज हर आदमी का जीवन
0: बड़ी तीव्र गति से, द्रुत गति से दौड़ रहा है, कार्य अधिक और समय सीमित।
1: यही कारण है कि हर आदमी पंख लगाकर उड़ना चाहता है
0: और छू लेना चाहता है आकाश को।
1: संचार क्रांति में मील का पत्थर ये मोबाइल फोन इसमें उसका सहयोगी है।
0: मोबाइल फोन आदमी के जीवन से भी तेज दौड़ रहा है।
1: संचार क्रांति के बढ़ते चरण निरंतर गतिमान हैं। इस कड़ी में एक पग और बढ़ा है इंटरनेट के पदार्पण से।
0: सर्वप्रथम विदेश संचार निगम ने सन 1995 में व्यापारिक स्तर पर इंटरनेट सेवा प्रारंभ की।
1: इंटरनेट के माध्यम से देश में ही नहीं विदेश में नेटवर्क से जुड़े कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, सरकारी संस्थान, व्यावसायिक संस्थान से पल भर में संपर्क जुड़ जाता है।
0: इंटरनेट संसार भर में फैले कंप्यूटरों का विशाल जाल है जो परस्पर संचार तकनीक से जुड़े हुए हैं।
1: इनके माध्यम से संसार की किसी भी जानकारी को अविलंब प्राप्त किया जा सकता है।
0: विदेश संचार निगम द्वारा संवाद उपग्रह के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल नामक एक और सेवा भी उपलब्ध है।
1: संक्षेप में ई मेल कही जाने वाली ये एक ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी कंप्यूटर तक संदेश प्रेषित किया जा सकता है।
0: प्रगतिशील विज्ञान ने संचार माध्यमों को वहीं ला दिया है जहां सारा संसार है और आप हैं।
1: संपूर्ण विश्व को आपके पास और आपको विश्व के पास ला दिया है।
0: दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है।
1: आप 001-202-456-1414 डायल कर अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात कर सकते हैं।
0: समूचे विश्व को सीमा विहीन कर दिया है इन संचार माध्यमों ने।
1: आकाशवाणी के श्रोता जब श्री कृष्ण जन्म स्थान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आंखों देखा हाल सुनते हैं,
0: या बरसाने की लठमार होली में हुरिहारों पर ब्रज गोपिकाओं की दनादन दनादन पड़ रही लाठियों की आवाजें सुनते हैं,
1: तब उन्हें ये पता नहीं होता है कि इनका प्रसारण टेलीफोन लाइन द्वारा होता है।
3: वंदे ब्रज वसुंधराम, आनंद कंद ब्रज चंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पावन जन्म स्थली मथुरा में मंदिर श्री द्वारकाधीश आज प्रातःकाल से ही भक्तन के आवागमन का एक बहुत बड़ा केंद्र है।
1: संचार के सभी माध्यम हमारे अभिन्न साथी हो गए हैं, हमारे अभिन्न मित्र हैं।
0: इन माध्यमों से एक अति महत्वपूर्ण माध्यम टेलीफोन के संबंध में महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था,
1: कौतो अजानार ले जाइने ले तुमी, कौतो घोरे दीले ढाई, दूर के कोरे ले निकट बंधु, पार के कोरे ले भाई।
0: इस बंगला कविता का हिंदी अनुवाद है, तुमने मेरा परिचय ऐसे मित्रों से करवाया जिन्हें मैं जानता नहीं था, तुमने मुझे उन घरों में प्रवेश दिलाया जहां मेरा आना जाना नहीं था, तुमने दूर वालों को निकट ला दिया और अजनबियों को मेरा भाई बना दिया।

0: 17 मई का दिन जब जब आता है,
1: संचार जगत से जुड़ा हुआ एक विशेष दिवस बन जाता है।
0: इसी दिन सन 1865 में पेरिस में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी।
1: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सामंजस्य के लिए
0: विश्व संचार दिवस जब जब आता है, देश के लाखों करोड़ों फोन उपभोक्ताओं को कोटि कोटि मंगल कामनाएं देता है।

अभी आप सुन रहे थे रूपक, दूरियां नजदीकियां बन गईं। इसके लेखक थे मोहन स्वरूप भाटिया और प्रस्तुतकर्ता आर के त्रिपाठी।

साथियों, आप सभी जानते हैं कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइलेंट किलर माने जाने वाले हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना और इसकी समय पर जांच करना और उसे नियंत्रित करने के उपाय बताना है। इसका आरंभ 2005 में हुआ था। इसका जो देश है, दुनिया भर में आधे से ज़्यादा लोग ये नहीं जानते कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। यह दिन लोगों को अपने रक्तचाप की नियमित जांच, बीपी चेकअप कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप दिल के दौरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी जानलेवा बीमारियों का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रति

0: प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। देशगान एक बार पुनः आप सुन सकते हैं 8:20 पर। 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल कुमार पांडे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा गर्मियों में गहरी जुताई के लाभ, और दूसरी चर्चा बढ़ता तापमान रखें सुरक्षा का ध्यान। इसके अलावा आप सुन सकते हैं मन भावन क्रम में अपनी ही पसंद के लोकगीत। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45, जिसमें आप सुनते हैं गैर फिल्मी भक्ति संगीत। 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद। आज कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे राम अवतार अवस्थी। 7:45 फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी हम आपको सुनवाएंगे 7:31 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं रात्रि 8:00। 1 ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज आप सुनेंगे हिना फिल्म के कुछ गीत। सुहाने तराने का समय रहेगा 9:15। 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। जैसे हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकर आएंगे, आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। एक बार आपको पुनः स्मरण करा दें, संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। ब्रज काव्य मकरंद हम आपको सुनवाएंगे 7:05 पर। प्रस्तुत करेंगे राम अवतार अवस्थी। कार्यक्रम श्याम सुहानी का आनंद आप लेंगे 7:31 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00 और 9:15 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडेय।

0: सब भैयान को हमारी राम राम। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में अपने खेतन में गहरी जुताई करी जाए तो बाको काफ़ी लाभ हमें मिल सके है। गर्मी में 9 से 12 इंच गहरी जुताई करनो मिट्टी के स्वास्थ्य और पैदावार बढ़ावे को एक बेहतरीन कृषि क्रिया है, जाते मिट्टी की संरचना में सुधार हुए है और जल धारण क्षमता बढ़े है। जी चिलचिलाती धूप में मिट्टी के हानिकारक कीड़े रोग और खरपतवारन के बीजन को नष्ट करके 20 से 25% तक पैदावार बढ़ावे है। भैया तेज धूप की वजह से मिट्टी के अंदर छिपे हानिकारक कीड़ान के अंडे, प्यूपा, लार्वा और जड़ गलन के रोगाणु ऊपर आए के नष्ट है जाए हैं। मोथा, दूब और कांस जैसी बहुवर्षीय घास की जड़ और बीज ऊपर आए के सूख जाए हैं। गहरी जुताई थे भैया मिट्टी की ढेलेदार संरचना बने है, जाते वर्षा को पानी ज़्यादा गहराई तक समाए जाए है और खेत की नमी बनी रह हुए है। एक बात और भैयाओ, मिट्टी पलटवे ते नीचे के पोषक तत्व ऊपर आमे हैं, जाते गोबर की खाद और कार्बनिक पदार्थ अच्छी तरह मिल जाए हैं। मिट्टी भुरभुरी और मुलायम बने है, जाते जड़न को विकास बेहतर हुए है। भैया बात जी है कि अगर गर्मी में गहरी जुताई करी जाए तो खेत की मिट्टी उपज की बढ़ोतरी सहित अनेकन ऐसे लाभ हैं जिन्हें प्राप्त किया जा सके है। भैया जा बात के बाद अब बात आज के मन भावन की। कार्यक्रम में सबसे पहले लोकगीत सुनवा रहे हैं गिरीश कुमार के स्वर में। जी लोकगीत सुनो।
1: मेरे भारत की आत्मा।

0: गिरीश कुमार के स्वर में भैया ने सुनो जी लोक गीत। अब सुनो मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में जी अगलो लोकगीत।
1: छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी

माखन खावे भी वेने वात पूछी लाली माखन खावे भी आहा आहा कहके

भैया आनंद ले रहे हे जालो गीत को, स्वर हो मदन मोहन ब्रजवासी को। भैया गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रही है, हम आप सभी अपने काम करवे को घर से बाहर निकले हैं, ऐसे बढ़ते तापमान में अपनी सुरक्षा के काजें हमें सावधानी रखनी चाहिए, आवश्यकतानुसार बचाव करना चाहिए। जाके काजे भैया हमेशा शरीर को हाइड्रेटेड रखें और सीधी धूप से बचें। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक

बाहर निकल भी ते परहेज करें। यदि बाहर जाए वो जरूरी हो तो सूती कपड़ा पहने, सिर ढक के रखें और पर्याप्त पानी पीवे। शरीर में पानी की कमी न होए, जाके काजे प्यास न हेवे पेऊ, हर थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। भैया नींबू पानी, सिकंजी, नारियल पानी, छाछ और बेल को रस जैसे पौष्टिक पेय को सेवन करें। बाहर निकलते समय हमेशा अपने पास ORS या ग्लूकोज को घोल रखें। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और संतरा जैसे पानी से भरपूर फलन को अपनी डाइट में शामिल करें। तला भुना और भारी खाना खाए ते बचें। भोजन में दही और सलाद की मात्रा बढ़ावें। चाय काफ़ी के अत्यधिक सेवन ते बचें, क्योंकि जी शरीर को डिहाइड्रेट करे है। भैया धूप ते बचाव के काजें हल्के रंग के ढीले ढाले और पूरी बांह के सूती कपड़ा पहने, ताकि हवा शरीर तक पहुंच सके। बाहर जाते समय छाते को इस्तेमाल कर सके हैं। सिर को टोपी, पगड़ी या सूती गमछा ते ढकें। भैया खाली पेट कबू घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। धूप में ते अचानक लौटें तो तुरंत ठंडो पानी न पीवें, बल्कि थोड़ा सामान्य तापमान को पानी पीवें। भैया जात रहते ऐसे बढ़ते तापमान में अपनी सुरक्षा रखी जा सके है। जा बात के बाद भैया सुनो जी लोकगीत ओम प्रकाश गोप के स्वर में।

ओम प्रकाश गोप के स्वर में भैया ने सुनो जी लोकगीत। अगला लोकगीत है उदयवीर सिंह और साथ ही के स्वर में भैया सुनो।

भैया आनंद ले रहे हैं जा लोक गीत को, स्वर दियो हो उदयवीर सिंह और साथ इनने। भैया जाई के संग आज के मन भावन को यहीं पे दें हैं विराम, सब भैयान को हमारी राम राम।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अपनी पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

जय वैष्णो देवी। इस फिल्म में आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को। अनुराधा पौडवाल को ही आइए आप सुनते हैं। फिल्म का नाम है संत ज्ञानेश्वर।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था जय संतोषी माँ। संध्या वंदन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज काव्य मकरंद। आज ये प्रस्तुत कर रहे हैं राम अवतार अवस्थी।

0: की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे।
1: हमारो कन्हैया प्रेम के कारण छछिया भर छाछ पे नाचे, जाको भेद शंकर ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जाने हैं।
0: कि शंकर से मुन जाहि रटे, चतुरानन चारो ही आनन गावे, अजो ही

सिन हे बांके बिहारी मीत पिया हे चपल नयन गिरधर नागर हे कुंज बिहारी मीत पिया हे द्रौपदी जीवन प्राणपति हे रास बिहारी मीत पिया हे चतुर शिरोमण बन माली हे छैल बिहारी मीत पिया हे छैल बिहारी मीत पिया। हे वृंदावन बिहारी अपने भक्तों को चरणामृत पान ऐसी कराते रहना और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहना। रथकान भी हमारे ब्रज में आए और जैसे कन्हैया को देखे हो तो उनके दर्शन को देख करके मन मुक्त है गए रथकान जी और मन में बड़ा उत्साह भयो और हमारे कन्हैया के दर्शन और छवि को देखकर उनके परम भक्त है गए रथकान कवि जो हुए और कन्हैया के चरणों में जो ही नमन करे उनकी स्तुति श्रवण करे है बाको जीवन में उद्धार है जावे और बाकी सारी मनोकामना पाप पूर्ण हो जावे है। कन्हैया हमारा बड़ा दयालु और करुणा को सागर है सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे है।

0: आप सुन रहे थे ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे थे राम अवतार अवस्थी। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 7:18 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले
5: ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना।
8: इतनी भी क्या जल्दी थी?
7: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना।
8: और ये मेरी बुढ़िया के नाम।
7: पर दादी आपके नाम?
9: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
7: शुभ शुभ बोलो। क्या?
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से।
6: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम

0: अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमा किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5,00,000 तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे, ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
1: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्रप्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है, जो उन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5,00,000 रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
0: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप

0: प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1985 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
1: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे जमीन पे गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को खासतौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती।
0: गाजियाबाद स्थित NTH की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से MSME निर्माता निर्यातक उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहू और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में बांटकर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: सेल्फी लेंगे,
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल

0: मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
0: सुगंध, क्या हो रहा है?
1: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे।
2: पिन दे।
0: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले
5: ना।
6: कार्यक्रम शाम सुहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहता है। आपके बहुत सारे संदेश हमें मिले हैं, जितने इंतजार में आप रहते हैं उतने ही इंतजार में हम भी आपके नाम बोलने के लिए उत्सुक रहते हैं। कोली नादेड महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। और ये संदेश हमें मिला है रोहित का। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लड़ला चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। डोडी लोहरा लोनी से नसीमुल इस्लाम कुनौरी और दानिश कुनौरी। दंतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से ये तीन बहनें हैं, सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और रानू मैडम जी। ग्राम अमलीडीह कवर्धा छत्तीसगढ़ से संतोष राजपूत, हेम प्रभा पूर्वी और गौरव राजपूत। भाई नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, बिटिया चुलबुल रानी, जय और बीरू, मधुबनी बिहार से। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी, सौरभ, सायना और निवान। संघ मित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 यवतमाल से जयराम, निशांत और अर्पिता। एसएम जावेद, शवथवा, अंजुम और नजमुल हौदा, गुमला झारखंड से। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी, गंज डुडवारा से। सोनाली सुरेश नारंग, चंद्रनगर सहारनपुर से आशा नारंग, लक्ष्मण राव, कल्पनाताई, प्रतीक्षा, शैलेश, स्वपील, रक्षिता और रेयांश, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा और जुहानरा हुमा, हयात कॉलोनी, अररिया बिहार से। गांव पजेनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और इनके परिवारिजन।

विनोद मूढ़त नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त, चेतन नाहटा उज्जैन मध्य प्रदेश से, सोनू सुरेश राजपाल, पंकज काजल मानवी, लक्ष्य मोहिनी और बलवीर सिंह, जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, सहेली रेडियो श्रोता संघ आजाद रोड सनावस से बेगम सलमा खत्री, बेबी सौम्या, आयशा सदिया नवासी और मोहम्मद सगड़। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे पंकज उदास को, फिल्म का नाम था नाम। अब हमें जो संदेश मिले हैं, मामूलवाड़ी नादुरा से एस आर आडोकार, विजय आडोकार, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगला और राजेंद्र शाह, पद्मा टाकीज, नेपाल नगर, मध्य प्रदेश से। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। दुविहा नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और परांजल राय। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर, यमेघर, प्रमोद और प्रदीप। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, कशवा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू, हंसमुख लाल, बुलबुल, सजीव और पूरा इनका परिवार। ये संदेश मिला है हमें पंजाब से। राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना और मोहम्मद कैफ, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। पूर्णा जंक्शन मस्त

खानापुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत, ताश मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से दरियापुर भावली महाराष्ट्र, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप अशोक, शहरी बडनेर अकोला से अरुणा वलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर, रेगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णब और सत्यम आनंद, पाकुड़ झारखंड से विजय सुरलकर, रतलमाला सुरलकर, गौरी सुरलकर, मोताला महाराष्ट्र से, आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को आपने सुना। फिल्म का नाम था दिल। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, सहानबाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार, प्रमोद बागड़े, वर्षा बागड़े, प्रतीक बागड़े और संकेत बागड़े, ग्राम कोलासर से तालुका नादुरा, नबी हसन अब्बासी, सहानबाज अब्बासी, नबीद हसन, सोहेल, रशीद, अनम और यह सब अब्बासी परिवार, मारहरा दरवाजा एटा से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष महिरकर मलकापुर से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शुभांश वर्मा, गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। आप सब सुनना चाहते हैं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था हीर राजा। इस गीत के साथ ही आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हमारे सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था धर्मवीर। आइए आप सुनते हैं फिल्म गदर का ये गीत। आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे यशुदास को फिल्म दादा में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

आप सुन रहे थे उषा टंडन को, गीत लिखा था योगेश श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं अगला देशगान।

आप सुन रहे थे उषा टंडन को, गीतकार थे योगेश श्रीवास्तव। इसी के साथ देशगान कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिना फिल्म के कुछ गीत।

0: इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने हिना फिल्म के कुछ गीत सुने, आवाजें थी लता मंगेशकर की। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 8:45 पर होने वाले कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता VD सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता।

0: दाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोसन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेल

गाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दिल से मिले तिल। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: Coupé.
1: ये है मेरा कूपे। जूडिथ का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
2: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
1: कूपे में भी?
2: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
1: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
2: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
2: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
3: अच्छा, मैम साहब आ गए? आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कनेक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको, सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
2: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
3: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
2: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
2: ओके।
3: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
2: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं

0: से कितने भिन्न हैं। वो ना प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, ना दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ, जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
1: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही
0: है। अच्छा,
1: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
0: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
1: मेरी शादी नहीं हुई है।
0: क्या?
1: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
0: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
1: कई वर्ष हो गए।
0: आपके बहुत मित्र हैं।
1: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
0: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
1: करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
0: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
1: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
0: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है, और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे।
1: आती हूँ।
2: बाहर अभी वर्षा होकर चुकी है। मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
3: अरे, आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद। देख सकता हूँ?
1: ये मेरी डायरी है।
3: तब नहीं देखूंगा। डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
1: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
3: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
2: खिड़की खोल दूं। वर्षा से भीगी हवा आने दो।
3: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
1: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
3: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
1: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
3: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
1: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
3: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
1: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
3: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
1: पीजिए।
3: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां। बड़े मजे के साथ कह सकती हैं, लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूं।

0: लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
1: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं।
2: नहीं है तो हो जाएंगी।
0: मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
1: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
0: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
1: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
0: आप ऊपर कैसे जाएंगी?
1: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
0: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही हैं? प्लीज।
1: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
0: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
1: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
0: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरे बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
0: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
0: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
0: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
0: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगी?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व तो एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
0: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
0: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
0: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने।
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
0: प्लीज
1: मत तेज पूंछ है, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
0: देखो
1: ये दलीलें अब्बासी होती
0: हैं। प्लीज,
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या
0: है। मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ इसी क्षण उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
0: सांत्वना,

0: क्यों आए हैं इस समय?
1: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
1: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
0: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
1: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
0: क्या मतलब है आपका?
1: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं हैं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सकें।
2: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
0: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
1: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
2: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ। मुझे बहुत दुख है दरअसल।
0: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेट, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है जिनके लिए देह ही सब कुछ है, लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई। देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
1: कौन हो तुम?
0: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?

0: कर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
1: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
1: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है। इस छद्म को उतार फेंको।
0: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेपे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहां है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: मम्मा, मम्मा, तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
3: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
0: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
3: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मम्मा?
0: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
1: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
0: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट न पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
4: सांत्वना, सांत्वना, तुम सो गई?

0: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
1: सांत्वना, हम ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
0: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
1: तुम शादी कर लो।
0: बट शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
1: धोखा तुम आप दे रही हो।
0: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
1: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार ना बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार ना बनूं?
0: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
0: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
0: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
0: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
0: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
0: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
2: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
0: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
0: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है, जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
0: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
2: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना, प्लीज।
0: मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
3: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
0: मेरा नाम सांत्वना है।
3: ओह, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरबजीत, भाई बधाई।
2: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
3: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं, यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
3: ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप?
3: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। पर सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।

0: अरे देता हूँ, आप उतरिए।
1: ये लीजिए।
2: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले।
3: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

टूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी। एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी।

0: संगीत समारोह, आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति, इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध हैं और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। बॉर्न एंड रेज्ड इन चालिसगांव महाराष्ट्र एंड इंस्पायर्ड बाय हिज लेट फादर श्री रामचंद्र सोनार, एन एमिनेंट वोकलिस्ट ऑफ द वारकरी सांप्रदाय, विवेक स्टार्टेड प्लेइंग द फ्लूट एट अ टेंडर एज। After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as Jugalbandi concerts with leading exponents of the Santur, Sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mohotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mohotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mohotsav Goa, Gunjan Sangeet Mohotsav Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A Grade Artist for Indian Classical Flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar. Surmani title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, Vrindaban Gurukul Scholarship. Tonight Sri Vivek Sonar presents Rag Chandra Kaus Alap, Jod and Madhyalayagat set to Rupak Tal and Drutagat set to Teen Tal. He will be accompanied on tabla by Sri Ojas Adhiya.

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to Raag Chandra Kaus by renowned flautist Shri Vivek Sonar. He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravivasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड

0: 256.4 GW बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defence, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी